एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। आज मंगलवार है, शत संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 और 12 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा मंगल ध्वनि के साथ अब आरंभ होती है।

FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद सुनिएगा हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित, और उसके तुरंत बाद 6:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित रंगारंग कार्यक्रम। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, जब तक जीवन है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में लीजिए सुनिए भक्ति रचना।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हरियाणवी लोक रंग आकाशवाणी के एसआर केंद्र से। ये कार्यक्रम हर रोज सुबह 7:10 से 7:40 तक प्रसारित किया जाए। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सके हैं।

0: ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। कलाकार हैं बाबू राम दैया वे साथी।
1: शकार खेल आया था दरवाजे पर नजर।

ये सुनी भाइयों, आज आपने हरियाणवी लोकरंग कार्यक्रम के तहत हरियाणवी रागनिया आज के कलाकार थे बाबू राम दैया वे साथी। इसी के साथ आज का हरियाणवी लोकरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे वन भैया ने राम राम।

0: नया बेहतर है
1: क्योंकि तुम ही हो,
2: किंतु पुराना बेहतरीन।
3: दिल चीज़ क्या है?
0: नया श्रेष्ठ है
1: केसरिया तेरा,
2: किंतु पुराना श्रेष्ठता।
0: नया उत्कृष्ट है
1: तेरी गलियां,
2: किंतु पुराना अनमोल।
3: चुरा लिया है तुमने जो दिल को,
0: नया अनूठा है
2: किंतु पुराना अनुपम।
0: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे,
2: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
0: हर बुधवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। क्या आप परेशान हैं?
1: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
0: क्या आप खुश हैं?
3: आज मैं ऊपर।
2: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
0: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
1: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
2: या आप प्यार में हैं?
1: पहला पहला प्यार है।
0: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
1: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
2: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
0: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
2: कार्यक्रम संदेश आपके, गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम लोक रंग FM बैंड 102.3 MHz पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 7:41 हुए हैं। आइए अब आप और हम मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आप सभी की अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया का नमस्कार। श्रोताओं, आज है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, 9:39 तक रहेगा और राहु काल का समय दोपहर लगभग 3:30 से 5 बजे तक रहेगा। हिसार और आसपास के क्षेत्रों में आज भी गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 40 से 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन भर तेज धूप और गर्म हवाएं चल सकती हैं। घर से निकलते समय पानी अपने साथ रखिए। सूती और हल्के रंग के वस्त्र पहने। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अनावश्यक धूप से निकलने से बचिए। मौसमी फल तरल पदार्थों का सेवन कीजिए। श्रोताओं, सफलता का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन उस पर चलने वाले कदम हमेशा इतिहास बनाते हैं और इसी सकारात्मक सोच के साथ करते हैं दिन की शुरुआत प्रभु वंदना के साथ।

अब सुनिए रामचरितमानस के ये श्लोक। दंपत्ति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल बिनित प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। अर्थात राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में भीगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए।

एक बार की बात है, एक गांव में एक वृद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गुरुजी का स्वभाव बहुत शांत और सरल था। दूर दूर से लोग उनसे जीवन की समस्याओं का समाधान जानने आते थे। एक दिन एक युवक गुरुजी के पास पहुंचा। वो बहुत निराश था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में लगातार असफल हो रहा हूँ, मेहनत भी करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती। अब तो मुझे लगता है कि मुझ में कोई योग्यता ही नहीं है। गुरुजी मुस्कुराए और उसे शाम को आने के लिए कहा। संध्या होते ही गुरुजी युवक को अपने साथ गांव के बाहर एक पहाड़ी पर ले गए। वहां चारों ओर अंधेरा छा चुका था। गुरुजी ने अपनी झोली से एक छोटा सा दीपक निकाला और उसे जला दिया। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, इस छोटे से दीपक से क्या ही होगा, चारों तरफ इतना घना अंधेरा है। गुरुजी बोले, थोड़ा आगे चलो। युवक दीपक लेकर आगे बढ़ा। दीपक की रोशनी केवल कुछ कदम तक ही दिखाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसने कहा, गुरुदेव, मुझे पूरी राह दिखाई नहीं दे रही है। गुरुजी ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें अगले कुछ कदम दिखाई दे रहे हैं? युवक ने कहा, हाँ। गुरुजी ने कहा, बस उतना ही पर्याप्त है। जब तुम उन कदमों को पार कर लोगे तो अगले कदम अपने आप ही दिखाई देने लगेंगे। युवक कुछ सोचने लगा। गुरुजी ने आगे कहा, जीवन भी इसी दीपक की तरह है। हमें पूरी मंजिल कभी भी दिखाई नहीं देती। यदि हम ये सोच कर बैठ जाएं कि जब तक पूरी राह नहीं दिखेगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा, सफल लोग वो नहीं होते जिन्हें शुरुआत में पूरी सफलता दिखाई दे जाती है। सफल वो होते हैं जो अंधेरे में छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे अपनी गलती समझ आ गई। हर बार असफलता के बाद वो रुक जाता था क्योंकि उसे तो तुरंत परिणाम चाहिए था। उस दिन के बाद उसने ये निश्चय किया कि ये केवल अगले कदम पर ध्यान देगा, मंजिल की चिंता कभी नहीं करेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वो अपने क्षेत्र में सफल व्यक्ति बन गया। दोस्तों, जीवन में कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब आगे का रास्ता हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि रास्ता है ही नहीं। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक पूरे रास्ते को नहीं केवल कुछ कदमों को रोशन करता है, उसी प्रकार हमारा विश्वास, हमारी मेहनत और हमारा धैर्य भी हमें धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए कभी कभी बड़ी मंजिल देखकर घबराइए मत। बस आज का एक सही कदम उठाइए, कल का रास्ता अपने आप दिखाई देने लगेगा। हजारों मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से ही तो शुरू होती है, और वही छोटा कदम एक दिन बहुत बड़ी सफलता की कहानी बन जाता है।

इसी के साथ आज का सुप्रभात कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 8 बजे आइए सुनते हैं समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्रालय ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकीप और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
4: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
6: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक हो रहा हूँ।
4: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
7: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिनभर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
8: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमांड पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प। ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करे। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक GPS से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में MT मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: FM बैंड 102.3 MHz पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित। अब आप सुनिए विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

समय था जब खुशियां बहुत छोटी छोटी चीजों में मिल जाया करती थी। फुर्सत के क्षणों में परिवार के साथ बैठकर बोलना, बतियाना, खाना पीना, हंसी ठिठोली, बातें करना, छत पर देर तक बातें करना, चांद सितारों को निहारना, त्योहारों की हलचल, इन सब में हमारे चेहरे पर खुशी और मुस्कान खिली रहती थी। साधन उस समय सीमित थे, लेकिन प्रेम और अपनेपन की मिठास घुली रहती थी। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। हमारे मन में खुशी कम होती जा रही है। लेकिन खुश रहना कितना जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, आज हमें ये सोचने की फुर्सत नहीं है। जब हम खुश होते हैं तो मन में जैसे तरंगे आती हैं, मन में ऊर्जा पैदा होती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन उड़ जाता है मुक्ताकाश की ओर, और पांव जमीन पर नहीं पड़ते।

आज पहले जैसे खुश न रहने का कारण ये है कि जीवन की रफ्तार, जीवन की गति बहुत तेज हो गई है। हर कोई व्यस्त है, सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह हमें बहुत सारी उपलब्धियां तो देता है, तो दूसरी ओर हमारे अपनों से हमें दूर करता जा रहा है। एक दूसरे के लिए हमारे पास समय कम होते जा रहे हैं, साथ रहते हुए भी मन की दूरी बढ़ती जा रही है। अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आगे बढ़ने की रेस मन को थकाने लगी है। रिश्तों में आत्मीयता और दिलों की चमक, मन की मिठास धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी।

खुशी हमारे भीतर ही विद्यमान है, हमसे अलग नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम घर, बाहर, समाज और अपने कार्यस्थल पर अपनी मुस्कान और अपनापन जरूर बांटें, अपनी संवेदनाएं बाहर निकालें, सबका आदर और सम्मान करें। अपनी संवेदनाओं को कभी कुंठित नहीं होने देना चाहिए। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी के सुख दुख को बांट लेना, सहयोग के दो शब्द कह देना, मीठी बोल बोल देना, ये सभी चीजें जीवन को जीवंत बनाए रखता है। तब हमारे स्वयं के चेहरे पर भी सुकून और खुशी लौट आती है, और जब हम खुश होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड खुश होता है। पेड़ पौधे खुशी से झूमते नजर आते हैं। खुश रहने के नियम बताए गए हैं, सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य का ध्यान, दूसरों से तुलना न करना, वर्तमान में जीना, माफ करना और संतोष करना। इन नियमों का पालन मानसिक शांति जीवन में चेतना लाती है। जीवन खुशियों से भर जाता है और जिंदगी को पूरी तरह से प्यार

बागी फोर से गीत अभी आप सुन रहे थे, स्टीवन बेन इसे गा रहे थे। समीर रंजन ने इस गीत को लिखा और म्यूजिक सिद्धांत मिश्रा का। जुबिन नौटियाल की आवाज में ये गीत दिल जंगली फिल्म का नाम है।

0: अभिजीत सिंह की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे मेट्रो इन दिनों से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बेख्याल हो कहीं किसी,
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल, सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का नाम था। वरुण जैन की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। सचिन जेगर का संगीत था, इंद्रनील ने इसे लिखा।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहीं
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं चित्रलोक विविध भारती से। एजेंट विनोद इस फिल्म से गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, प्रीतम का संगीत है अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

तुम्हारी सुलू इस फिल्म से एक ही तभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और साशा तिरुपति की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और तनिष्क का म्यूजिक था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर यह फिल्म का नाम। शेखर रावजानी, समीर, सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाजें, विशाल शेखर का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहार खिली गली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं चित्रलोक इस वक्त विविध भारती से। रावता फिल्म का नाम है। अरिजीत सिंह की आवाज में गीत सुने। प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर।

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं, लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है दोस्तों। फिल्में जो भी हों, लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।

पृथ्वीराज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और इसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

क्योंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।

1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा।

राज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है

0: दोस्तों 1972 में राज खोसला ने एक फिल्म प्रोड्यूस भी की थी और वो थी फिल्म दो चोर।
1: आए की बांध के पायल होए बदन चुराए नाजुक कमर से लगाए।

राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 102.3 MHz पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। सुबह के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार। हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, नया उत्साह और जीवन को बेहतर बनाने का एक नया अवसर लेकर आती है। उगते सूरज की सुनहरी किरणें जब धरती को स्पर्श करती हैं, तो लगता है मानो प्रकृति स्वयं हमें ये संदेश दे रही हो कि बीते हुए कल की चिंताओं को पीछे छोड़कर आज के दिन का स्वागत मुस्कान के साथ कीजिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप सभी का अपना प्यारा दुलारा कार्यक्रम नमस्ते हिसार, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया। अगले एक घंटे तक हम बातें करेंगे आपके अपने शहर की, अपने लोगों की, मौसम की, ताजा खबरों की। आपसे पूछे जाएंगे दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिनका जवाब आप हमें देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और जिस श्रोता का सबसे पहले जवाब आएगा उनकी पसंद का गीत कार्यक्रम में सुनवाया जाएगा। आपसे बातें करेंगे बहुत सारी और आपको देंगे आपके शहर की जानकारी भी, क्योंकि हिसार सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि मेहनत, संघर्ष, संस्कृति की एक जीवन पहचान है। यहाँ की मिट्टी में किसानों की मेहनत की खुशबू है, यहाँ की गलियों में अपनापन है और लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्रेम है। हर सुबह हमें यही सिखाती है कि हमारे जो आसपास की खूबसूरती है उसको महसूस कैसे करें। उसको महसूस करने का अवसर हमें हर सुबह देती है पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और नई सुबह की ताजगी मन को एक नई ऊर्जा से भर देती है। तो चलिए दोस्तों, अपने जीवन की भागदौड़ से हम कुछ समय निकालते हैं और बात करते हैं हमारे शहर की। गर्मी अपने पूरे प्रभाव में है और आज भी तेज धूप और गर्म हवाएं महसूस की जा सकती हैं। दोपहर के समय तापमान काफी ऊंचा रहने की संभावना है, इसलिए यदि आवश्यक ना हो तो अत्यधिक धूप में निकलने से बचें और अपने साथ पानी की बोतल अवश्य रखें। हल्के और सूती कपड़े पहने बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखिए। मौसम चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो, यदि हम सावधानी बरतें तो स्वस्थ और भी सुरक्षित रह सकता है। दोस्तों, हम अपना और अपने बच्चों का ध्यान तो रखते ही हैं, साथ ही साथ हमें हमारे पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, हमें हमारे पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना है, उनके लिए खाना, पानी, दाना, इसकी भी व्यवस्था जरूर से जरूर करनी चाहिए। हिसार में विभिन्न सामाजिक और विकास कार्यों को लेकर गतिविधियां जारी हैं। शहर में स्वच्छता, यातायात व्यवस्था और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों द्वारा भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें युवाओं की भागीदारी उत्साहजनक दिखाई दे रही है। हमारा शहर शिक्षा, कृषि, उद्योग और खेतों के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखता है। ऐसे में हम सभी का ये दायित्व है कि अपने शहर को और अधिक सुंदर, स्वच्छ और प्रगतिशील बनाने में अपना योगदान दें।

0: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
1: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: बात करें अब स्थानीय समाचार की तो बालसमंद में बच्चों को दी संगीत और संस्कृति की जानकारी। तलवंडी राणा में समर कैंप, फास्ट फूड से दूर रहने की सलाह दी। हिसार जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तलवंडी राणा में आयोजित भारतीय भाषा समर कैंप के छठे दिन भी विभिन्न ज्ञानवर्धक और मनोरंजक गतिविधियां हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के पूर्व प्राचार्य देवीलाल शर्मा ने की। गणित प्राध्यापक सुभाष आर्य ने संचालन किया जबकि कैंप की जो नोडल अधिकारी निर्मल भी वहां उपस्थित रही। बच्चों को नदियों, पर्वत, ऐतिहासिक स्थलों और प्रसिद्ध स्मारकों के बारे में जानकारी दी गई और नशा, तंबाकू, शराब इन सभी चीजों से दूर रहने की सलाह दी गई। संगीत की बारीकियों से भी बच्चों को अवगत कराया गया। विभिन्न विद्यार्थियों को संगीत की बारीकियों के बारे में बताया गया। उन्होंने मधुर संगीत प्रस्तुत भी किए। सभी का मन मोह लिया और जो कैंप में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आप सभी का प्यारा दुलारा कार्यक्रम नमस्ते हिसार, आपकी अपनी रेडियो हम सफर प्रीति भिंडोरिया के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है हमारे कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की और वो है आप सभी का पसंदीदा सेगमेंट सामान्य ज्ञान प्रश्न का। आपसे पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान का प्रश्न और आपको देना है उसका जवाब। किस तरह से देना है ये जान लीजिए। सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9729253272 पर जाना है व्हाट्सएप में, और उसके बाद सबसे पहले आपको सवाल का सही जवाब टाइप करना है, उसके बाद आपका नाम, आपने कहां से हमें संदेश भेजा है, जगह का नाम और फिर अपनी पसंद का गीत। और श्रोताओं, पसंद का गीत उसी श्रोता का सुनाया जाएगा जो सबसे पहले जवाब हम तक भेजेंगे। तो चलिए अब आपको बता देते हैं हमारे आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, टैगा का अर्थ क्या है? टैगा का क्या अर्थ है? अब इसके ऑप्शंस जान लीजिए। ऑप्शन ए है पर्णपाती वन, ऑप्शन बी शंकु वृक्षी वन, ऑप्शन सी घास स्थल, ऑप्शन डी मरुस्थल। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप हम तक भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9729253272 पर। तब तक सुनिए ये प्यारा सा गीत।

हमारे आज के पहले प्रश्न के जवाब हम तक पहुंचा दिए हैं हमारे सभी सुनने वालों ने। और हमारा पहला प्रश्न था, टैगा का अर्थ क्या है। इस प्रश्न के ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए पर्णपाती वन, ऑप्शन बी शंकु वृक्षी वन, ऑप्शन सी घास स्थल, ऑप्शन डी मरुस्थल। और इस प्रश्न का सही जवाब है शंकु वृक्षी वन, या फिर आप कह सकते हैं शंकुधारी वन। और सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब दिया है गांव नलोई, तहसील सिवानी, मंडी, जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक व वेदांश। और ये सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा गीत आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम जी की आवाजों में। और दूसरे हमारे श्रोता हैं गांव ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी से रामधारी अवाना, अवनी प्रियांशी, रियांशी और जसनाया गुरदीप, बेबी कीरत अवाना, ये हमारे श्रोता है चरखी दादरी हरियाणा से, नम्रता, खुशबू और खुशदीप, ग्राम मामना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से हैं रामशरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। ये हमारे श्रोता हैं गांव हांडी खेड़ा, जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा, किरणपाल बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सोनिया, पूनम, सुमन, रोशनी देवी, इन्होंने भेजा है हमें ये अपना जवाब गोंदर करनाल से। और ये हमारे श्रोता है मंटू शर्मा, गांव शेरड़ा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से, कीर्ति नगर, कुरुक्षेत्र से है रामदिया, केला देवी, सतपाल, पूजा, रानी और प्रतीक। इन सभी श्रोताओं ने हमें बिल्कुल सही जवाब लिख भेजा है। तो चलिए अब जान लीजिए हमारे आज के दूसरे प्रश्न के बारे में। हमारा दूसरा प्रश्न है, मृदा का लावणीकरण किस कारण से होता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मृदा का लावणीकरण किस कारण से होता है। ऑप्शन ए पीड़कनाशी, ऑप्शन बी भूमि कटाव, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई या ऑप्शन डी फसल आवर्तन। इस प्रश्न का जवाब हमें जल्दी से लिख भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9722523272 पर। तो चलिए सुनते हैं सज्जन कुमार जांगड़ा जी की पसंद का ये खूबसूरत सा गीत, ये रात फिर ना आएगी फिल्म से।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत हमने हमारे श्रोता की पसंद पर सुनाया क्योंकि उन्होंने दिया था हमारे आज के पहले सवाल का सही जवाब। और आज का जो दूसरा सवाल था वो था, मृदा का लावणीकरण किस कारण से होता है। हमारे ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए पीड़क नाशी, ऑप्शन बी भूमि कटाव, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई, या फिर ऑप्शन डी फसल आवर्तन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अधिक सिंचाई, हमारा ऑप्शन सी। और इस प्रश्न का सही जवाब दिया है गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और वेदांश, इन्होंने दिया है हमारे दूसरे प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब। और ये हमारे श्रोता है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी आवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया और गुरदीप, इन्हीं के साथ है बीबी कीरत आवाना, चरखी दादरी से है ये हमारे श्रोता नम्रता, खुशबू और खुशदीप, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल, मंटू शर्मा है गांव शेरडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, जेवरा गांव हिसार से हैं वीरेंद्र भ्यान, शमशेर भ्यान, सुरेंद्र भ्यान और मनोज भ्यान, राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा ये है गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से। तो चलिए हम हमारे दूसरे प्रश्न के सबसे पहले जवाब देने वाले श्रोता सज्जन कुमार जांगड़ा जी की पसंद का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी को सुनवाते हैं।

0: फ्रॉम रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट्स है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी हिसार, स्टिल आइकॉनिक, स्टिल कनेक्टिंग इंडिया।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के हिसार केंद्र से आपकी अपनी रेडियो हमजा पर प्रीति ढिंडोरिया के साथ। दोस्तों, कार्यक्रम के इस सेगमेंट में हम बात करते हैं एक प्रेरक हस्ती की, प्रेरक व्यक्तित्व की, और आज हम बात करेंगे डॉक्टर गणेशी लाल की। श्रोताओं, जब भी हम शिक्षा, संस्कार और समाज सेवा की बातें करते हैं तो हिसार की धरती पर कई ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को एक नई दिशा दी है। ऐसे ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे डॉक्टर गणेशी लाल। डॉक्टर गणेशी लाल जी ने अपना पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार और समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति शिक्षा के माध्यम से ही तो संभव है। उन्होंने न केवल विद्यार्थियों को ज्ञान दिया बल्कि उन्हें जीवन के नैतिक मूल्यों से भी परिचित कराया। कहा जाता है कि वे विद्यार्थियों को हमेशा एक बात समझाते थे, सफलता केवल अंकों से नहीं बल्कि अच्छे चरित्र और अच्छे कर्मों से मिलती है। यही कारण था कि उनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उनसे प्रेरित हुए बिना बिल्कुल भी नहीं रहता था। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने शिक्षा की अलख जगाए रखी। उनके प्रयासों से अनेक युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला और उन्होंने समाज में अपनी पहचान भी बनाई। दोस्तों, आज के समय में जब हम छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाते हैं तब ऐसे ही व्यक्तित्व हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि उद्देश्य स्पष्ट है और मेहनत हमारी सच्ची है तो सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में बहुत बड़ा बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, तभी ज्ञान भी सार्थक होता है और हमारे काम भी। और वही ज्ञान सार्थक है जो हमारे समाज के काम आए, समाज के उत्थान के लिए काम आए। दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। कुछ ऐसे ही लोग समाज में जन्म लेते हैं जो अपने कर्मों से आने वाली पीढ़ियों का मार्ग रोशन करते हैं।

0: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताजा खबरें।
1: आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं।
2: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
3: मैं अलबेली घूमू अकेली।
0: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
4: अभी न जाओ छोड़ कर।
2: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
0: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
2: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: हर सुबह एक मौका है
2: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
0: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
2: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
0: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
2: आकाशवाणी हिसार के साथ।
5: राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
0: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
2: रोज सुबह 7:40 पर
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
6: दोस्तों हमारी सांस्कृतिक परंपराएं कौन नहीं जानता इस बारे में। और हमारा जो भारत देश है यहाँ हर किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, लेकिन जो चीजें पूरे देश को एक सूत्र में बांधती हैं वो है हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं। हमारी संस्कृति केवल त्योहार हो, रीति रिवाज हो, धार्मिक अनुष्ठान

इंसानों से तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन जीने का तरीका है। सुबह बड़ों का आशीर्वाद लेना, अतिथि का सम्मान करना, प्रकृति को पूजनीय मानना, परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, ये सभी हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। हमारे त्योहार भी तो हमें प्रेम, भाईचारे, एकता का संदेश देते हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस या कोई भी त्योहार। हर पर्व लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का काम करता है। यही विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी पहचान है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की संस्कृति अपनी सादगी और अपनत्व के लिए जानी जाती है। यहाँ की लोक कलाएं, रागनियां, सांग, लोक नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा और मेलों की परंपरा आज भी हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए हुए है। गांव की चौपाल से लेकर तीज और सावन के उत्सव तक हर परंपरा समाज को जोड़े रखती है। लेकिन बदलते समय के साथ बहुत सारी परंपराएं धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही हैं। आधुनिकता को अपनाना आवश्यक है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है। नई पीढ़ी को अपनी भाषा, लोक गीतों, लोक कथाओं, संस्कारों से परिचित कराना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की, तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को इस बारे में सिखाएं, आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी दें। एक बार एक बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा कि हम अपनी परंपराओं को क्यों निभाते हैं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, पेड़ जितना भी ऊंचा होता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं, और जो अपनी जड़ों को भूल गया, वो जीवन में स्थिर नहीं रह पाता। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वो हमारी जड़ें हैं, हमको पहचान देती हैं, मूल्यों से जोड़ती हैं और जीवन को एक सही दिशा भी प्रदान करती हैं। और हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को सही दिशा की जरूरत है, और सही दिशा उन्हें हमारे बुजुर्ग दादा दादी, नाना नानी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और जब बात होती है हमारी परंपराओं की, तो अनेकों मेले लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम भी अगर त्योहार हमारी परंपराओं के मुताबिक मनाएंगे, तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे, हमारे बच्चे भी वही गीत गुनगुनाएंगे जिनको सुनकर हम बड़े हुए हैं। हमारे बच्चे भी मेलों में झूलों पर झूलने की जिद करेंगे जैसे हम करते थे। तो दोस्तों, अपने बच्चों को हमारी संस्कृति से मिलवाइए। फोन, स्क्रीन, लैपटॉप सब कुछ जरूरी है, लेकिन हमारी परंपराएं, हमारी जड़ें भी उतनी ही जरूरी हैं।

श्रोताओं, बात करें अगर सांस्कृतिक परंपराओं की, तो अतीत की यादें ही केवल जरूरी नहीं है बल्कि उसको जीवन में लागू करना भी जरूरी है। बात करें प्रेरक व्यक्तित्व की, तो प्रेरणाएं बहुत हैं लेकिन हम कहाँ तक उसको अपने जीवन में लागू कर पाते हैं, उस चीज को हम सार्थक कर पाते हैं, उससे कुछ सीख पाते हैं, ये जरूरी है। सिर्फ सामान्य ज्ञान के प्रश्न सुनना ही काफी नहीं है, उसके बारे में जानकारी लेना भी जरूरी है। तो दोस्तों, इन सभी चीजों का समावेश है कार्यक्रम नमस्ते हिसार। और नमस्ते हिसार कार्यक्रम आप सभी के लिए हर रोज आता है सुबह 10 बजे से। चलते चलते बस यही कहेंगे कि आइए अब संकल्प लेते हैं हम अपनी भाषा, लोक कला, लोक गीतों, रीति रिवाज और पारिवारिक मूल्यों को सहेज कर अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत सदैव जीवित रहे। और इन्हीं विचारों के साथ मैं आपकी अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंढोरिया लेती हूँ आज के नमस्ते हिसार कार्यक्रम से इजाजत। FM बैंड 102.3 MHz पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 11 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद सुनिएगा विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित रंगारंग कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए आरंभ करते हैं कार्यक्रम रंग तरंग इस भक्ति गीत के साथ, जिसे लिखा है तुलसीदास ने, केदार पंडित ने इसे संगीतबद्ध किया है और अपने सुरों से सजाया है साधना सरगम ने।

हम सुन रहे थे अनफॉरगेटेबल ट्रीट आशा भोसले के इस एल्बम से, आशा भोसले की आवाज में मीरा भजन और जयदेव की स्कृति को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत, जो कि है शंकर शंभू कव्वाल और साथियों की इस एल्बम से, जिसे गाया है शंकर शंभू कव्वाल और साथियों ने। एल्बम का नाम है जिम्बो फाइन ससंग, अनजान के बोल हैं और सरदार सिंह का संगीत।

सितम एल्बम से यह नगमा हम सुन रहे थे चंदन दास की आवाज में, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल्स एल्बम से, चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज में, जिसे लिखा सुदर्शन फाकिर ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुन रहे हैं रंग तरंग। आइए सुनते हैं मीरा भजन बाई लता मंगेशकर इस एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में गीत के बोल मीरा बाई के हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे वडाली ब्रदर्स की आवाज में याद पिया की आए। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में जिगर मुरादाबादी के बोलों से सजे हुए इस नगमे को, जिसे महेश छेदर ने संगीतबद्ध किया है और इस एल्बम का नाम है जिगर से जिगर तक।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो पंक्तिम बात

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अंतिम नगमा, जिसे गाया है लता मंगेशकर जगजीत सिंह ने, शाहिद कबीर ने इसे लिखा है, जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है और हमने लिया है द बेस्ट ऑफ सजदा सजदा एल्बम से।

0: और इसी के साथ कार्यक्रम रंग तरंग समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे दो आंखें 12 हाथ फिल्म से यह गीत, जिसे साथियों ने गाया भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आज दिनांक है 9 जून और आज ही के दिन यानी 9 जून 2012 को सोनावडे विलेज यानी सोनावडे गांव में सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में जन्म लिया था वसंत देसाई ने, यानी आज उनका जन्मदिवस है। तो चलिए उनके ही गीतों के साथ यानी वसंत देसाई के गीतों के साथ हम उन्हें याद करते हैं।

0: हम सुन रहे थे दो बहने फिल्म से प्रदीप की आवाज में, प्रदीप के ही बोलों को वसंत देसाई ने जिसे संगीतबद्ध किया है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। जीवन में घोलते हैं संगीत, भूली बिसरी गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरी गीत
5: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए लेते हैं यादों की महफिल में एक छोटा सा विराम, उसके बाद पुनः हाजिर होते हैं हम आपके बीच में बहुत सुंदर से नगमों को लेकर जिसे सजाया है हमने संगीतकार वसंत देसाई की यादों के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में गुड्डी फिल्म का यह गीत। वाणी जयराम की आवाज में गुलजार के बोल हैं और संगीतकार वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं वसंत देसाई को। गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी ने गाया है, भरत ब्यास के बोल हैं और वसंत देसाई का है संगीत। आइए सुनते हैं।

हम सुन रहे थे गीत तूफान और दिया फिल्म से मन्ना डे की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म प्यार की प्यास से लता मंगेशकर तलत महमूद पर की आवाज में भरत व्यास के बोल हैं और वसंत देसाई का है संगीत।

हम सुन रहे थे अमर ज्योति फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म से। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। अनंत श्याम ने इसे लिखा है और वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया है।

0: ये अंधेरे तेरे मिट जाएंगे,
1: वो मिट जाएंगे
0: सारे बादल, सारे बादल सभी।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है फिल्म यादें सी, लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और वसंत देसाई का संगीत।

हम सुन रहे थे आशीर्वाद फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में गुलजार के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में जहां हम याद कर रहे हैं वसंत देसाई को उनके सुंदर गीतों के लिए। मूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज है, भरत व्यास के हैं बोल और वसंत देसाई का है संगीत।

और इसी के साथ समाप्त होता है आज का यह कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें याद कर रहे थे हम संगीतकार वसंत देसाई को। आज उनका जन्मदिवस है और उनको याद करते हुए हमने उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए गीतों को सुना। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

चलिए स्वागत है आप सभी का विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में और स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। अब ये सुरीला सफर शुरू हो रहा है और आज की जो इबारत है वो हम आपके बीच में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ मित्र हैं जो सोशल मीडिया पर हमें नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए इबारत हम जरूर पढ़ेंगे। इबारत थोड़ी बड़ी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारी पहेलियां हैं तो हम प्रत्येक गीत के पहले आपको ये पहेली सुनाते जाएंगे। हम कुछ पहेलियां दे रहे हैं, उसके साथ आज के शब्दों को ढूंढना है और बताना है और पहेली प्रत्येक गीत के पहले आपके बीच में रखी जाएगी। और अब हम जो चल रहे हैं इस इबारत के साथ में, हमने एक और बात आपसे कही है कि अगर आपके पास में कुछ पहेलियां हैं जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो जरूर करें, हो सकता है उससे जुड़ा हुआ कोई गीत हम आपको सुनवा दें कार्यक्रम के होने होने तक। तो चलिए चलते हैं, आज के कुछ संदेश हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे भेजे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर को शब्द संगीत पहेली का रूप दिया गया है। हम श्रोताओं को दिमागी कसरत और कुछ नवीन प्रयोग अच्छा लगा और सराहनीय भी, धन्यवाद कुछ नई सोच के लिए। और उन्होंने सारे उत्तर दिए हैं एक के बाद एक। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि कार्यक्रमों में विविधता ही विविध भारती की पहचान है, पहेलियों का सुंदर प्रयोग कुछ अलग हटकर करने की प्रामाणिकता है, समरसता अक्सर मनोरंजन बाधित होती है, अतः यह विविधता स्वागत योग्य है। और इसके साथ ही उन्होंने भी हर पहेली का उत्तर दिया है। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एक और संदेश जहां हमारे मित्र लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज पहेलियां पूछते हैं। कभी कक्षा के खाली समय में दो चार लोग यह खेल खेला करते थे, या किसी शादी के फंक्शन में रिश्तेदारों का जमघट होता था तो लोग मनोरंजन के लिए पहेलियां बुझाने का काम करते थे और सही जवाब पर ठहाके लगाते थे। हमारे एक श्रोता ने तो बड़ी गंभीर बात लिखी है, वो लिखते हैं पहेलियों की विषय वस्तु में वैदिक पौराणिक प्राकृतिक और लोक जीवन के प्रसंग प्रचुर मात्रा में देखने सुनने को मिलते हैं। पहेलियां ज्ञानवर्धक और स्मरण शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से कही और सीखी जाती है। पहेलियां प्रायः व्यंजना शैली में रची जाती है, इनकी भाषा में विशिष्ट भंगिमा होती है, रचना में बाकपन होता है, इस कारण इसका अर्थ लगाने में दिमागी कसरत तो होती ही है, भाषा भी निखरती है और विषय वस्तु के प्रति जिज्ञासा और हाजिर जवाबी भी बढ़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और कुछ तो कह रहे हैं कि वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं इन पहेलियों के साथ में, तो वह भी बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि पहेलियां दिमाग की कसरत नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं, धैर्य और दृष्टिकोण का एक खूबसूरत दर्पण है। वे सिखाती हैं कि जीवन की उलझन में गहरा अर्थ छिपा है। यह जीवन के उस फलसफे को दर्शाती हैं जहां हर सवाल का जवाब हमारे अपने भीतर मौजूद होता है और शब्दों और छवियों का यह खेल हमें अपनों के साथ जोड़ता है।

0: सुनिए। हरियाणा विधानसभा के तत्वाधान में चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन के जोन 2 सम्मेलन के आज दूसरे दिन प्रथम एवं द्वितीय सत्र में भविष्य की चुनौतियों से निपटने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जागरूक समाज एवं विधायकों की भूमिका विषय पर मंथन किया गया। तीसरे सत्र के
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जागरूक समाज एवं विधायकों की भूमिका विषय पर मंथन किया गया। तीसरे सत्र के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मीडिया के साथ वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प एक राष्ट्रीय संकल्प है जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक और संस्था को सहयोग करना होगा। श्री बिरला कल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा के चैम्बर में राष्ट्रमंडल संसदीय

0: उन्होंने कहा कि विधायकों की इस संकल्प की प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि विधायक अपने क्षेत्रों में नीतियों और जन कल्याणकारी पहलों के माध्यम से धरातल पर परिवर्तन लाने के सबसे प्रभावी माध्यम होते हैं। संसदीय लोकतंत्र में जन भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि जन संवाद और सार्थक चर्चाओं के माध्यम से नागरिकों में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि यह सदन उनका अपना है और जन प्रतिनिधि उनकी वास्तविक आवाज है। लोकसभा अध्यक्ष ने आह्वान किया कि देश में ऐसा जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए जिससे प्रत्येक नागरिक यह महसूस कर सके कि विकसित भारत के निर्माण में उसका भी अमूल्य योगदान है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जब समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होगी तब भारत की सामूहिक शक्ति और विशेष रूप से हमारी युवा शक्ति इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि हम वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध कर लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कल हरियाणा विधानसभा भवन में नव स्थापित पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया, जो विधायी कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। हरियाणा विधानसभा के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन के जोन 2 सम्मेलन की सांस्कृतिक संध्या के अवसर पर कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संविधान लोकतंत्र की आत्मा है। इस अंतरात्मा की आवाज को सुनकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वो चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में हरियाणा कला एवं संस्कृति विभाग तथा रास कला मंच के सहयोग से मंचित नाटक संविधान के नायक को देखने के बाद संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष तथा पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने भी नाटक के संदेश एवं कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। श्री नायब सिंह सैनी ने नाटक के जीवंत अभिनय एवं प्रेरणादायक प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि जिस प्रकार से रामायण में हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने का संस्मरण है, उसी प्रकार आज इस नाटक के माध्यम से कलाकारों एवं लेखक ने दर्शकों को संविधान के प्रति उनके दायित्वों की याद दिलाई है। ऐसे नाटक समाज को संस्कृति एवं देशभक्ति का मार्ग दिखाने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। नाटक के मंचन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपसभापति श्री हरिवंश, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मीठा, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार के अलावा विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद, विधायक एवं विधान मंडलों के अधिकारी उपस्थित रहे। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जींद के चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय आज एक दिवसीय जिला स्तरीय योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए गए आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। दिन के 1:10 हुए हैं। आइए लौटते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र आगामी रंगारंग प्रसारण के लिए।
2: ने सही दिया और उत्तर दिया माँ। बिल्कुल सही बात है, माँ ही है ना जो हमारे जन्म के पहले, यानी हर कोई हमारे जन्म के बाद हमें प्रेम करता है, लेकिन माँ होती है जो हमारे गर्भ में आने के बाद ही वह हमें प्रेम करने लग जाती है और उसी प्रेम के लिए हम उसे याद करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सभी सांस्कारिक

प्रश्नों पर गीतों पर चर्चा का समन्वय रहेगा। जन्म लेने से पहले माँ का साथ रहता है, किंतु जब वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। बिल्कुल सही कहा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वो माँ है, अपने बच्चों को के बारे में कितना कुछ सोचती है, कितना करती है। उस आंगन में नन्ही सी चिड़िया की तरफ उदकते हम कब बड़े हो जाते पता नहीं चलता। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहो, लाख पैसा कमा लो, पर अपना घर अपनी माँ हमेशा दिल में रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने भी। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, पर मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। ये बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा गीत है। बस बता दीजिए, माँ के लिए इतना प्यारा लिखने वाले गीतकार कौन है? इस गीत को लिखने वाले गीतकार कौन है, ये नाम बस बता दीजिए। और अगर आपके मन में कोई पहेली आ रही है तो वो हमसे जरूर साझा कीजिएगा।

अपनी माँ के साथ जाते हुए बच्चों को एक सुंदर सी घोड़े की टाप के संगीत के साथ रोशन ने संगीतबद्ध किया इस गीत को। मन्ना डे और महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज के साथ इसे गाया। दादी माँ फिल्म से लिया गया यह गीत है। और हमने आपसे पूछा था कि इतना सुंदर गीत रचा किसने, यह जरूर बताएं उस गीतकार का नाम। तो सच में इतने सुंदर गीत को रचने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को धन्यवाद बनता है। माँ के प्रति समर्पित हमारी भावनाओं को हम तक, हमारा वहां तक पहुंचाना। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है कि इस गाने की शूटिंग उदयपुर में हुई थी, हमने वो रास्ता देखा है। अरे वाह। इसके साथ ही हमने आपसे जो प्रश्न पूछे उसमें हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि फिल्म दादी माँ का गीत है और मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है। बिल्कुल सही। हमारे श्रोता ने लिखा है, कहते हैं तेरी शान से ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। बिल्कुल, माँ का, माँ के बिना तो ईश्वर भी स्वयं को ईश्वर कहलाने के लिए इस धरती पर नहीं आ सकते, उन्हें भी उनकी आवश्यकता होती है। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि हाथ दुआ वाले सदा रहते हैं सदा सर पर, तू है तो अंधेरे पथ में भी सूरज की जरूरत क्या होगी। बहुत खूबसूरत गीत हम सब ने अभी सुना और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने कुछ बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हमारे बीच में लिखी है और कुछ पहेलियां लिखी है। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तीतर के दो आगे तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, उन्होंने बताया तीन तीतर। चलो बढ़िया बात है। पर हमारे एक श्रोता ने एक और प्रश्न छोड़ दिया है, अब उसका उत्तर मुझे भी नहीं पता, शायद आपको पता हो और अगर सही होगा तो हमारी ये श्रोता आपके उस पर जाकर अवश्य बता देंगी कि आपने सही उत्तर दिया या नहीं इस पहेली का। काले रंग का प्राणी हूँ, उजाले के साथ में रहता हूँ, रात के अंधेरे में छुप जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। अब ये प्रश्न आपके बीच में हमने हमारी श्रोता का रख दिया है कि काले रंग का प्राणी हूँ, उजाले के साथ में रहता हूँ, रात के अंधेरे छुप जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। चलिए इसका उत्तर आप ढूंढिए। इसके साथ ही हम चलते हैं अगली पहेली की तरफ। फूलों की गलियों का मैं मुसाफिर अनजाना, आज की इबारत में हमने लिखा है कि फूलों की गलियों का मैं मुसाफिर अनजाना, गुनगुन मेरा गीत ना कोई शब्द पुराना, श्याम वसन ओढ़े फिरूं मधु की खोज में, बताओ कौन हूं मैं जिसका घर है हर बाग में। हम जानते हैं आप सही उत्तर दे चुके हैं और इसका उत्तर आपने दिया है बहुत अच्छे से, भंवरा। और जब भंवरे की बात चल रही है तो हमने हमारी श्रोता की वो पंक्तियां भी आपको सौंपी हैं और ये गीत भी हम आपको सौंप रहे हैं। बस इतना बता दीजिए इस गीत के संगीतकार कौन है, और अगर आपकी कोई पहेली है जो बड़ी सुंदर सी है तो हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा।

गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इतरा।

0: देखिए, हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गीत, और इस बढ़िया से गीत में हमने आपसे पूछा था कि बताइएगा इसके बारे में, और आपने बड़े अच्छे से उत्तर हमें दिए हैं। हमारे श्रोताओं के उत्तर सुनते सुनते बड़ा आनंद आ रहा है, पढ़ते पढ़ते बड़ा मजा आ रहा है। बहुत सारी पहेलियां हमारे बीच में आ रही हैं और उन पहेलियों के साथ बड़े प्यारे जज्बात भी आ रहे हैं। और हम जो गीत सुन रहे थे वह आज और कल, आज और कल फिल्म से सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज में हसरत जयपुरी के पोल, और जो प्रश्न है वो शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। इसके साथ ही हमने आपसे पूछा था तो आपका उत्तर काले रंग की परछाई है, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए देखते हैं उत्तर सही है या नहीं, आप अवश्य देख लीजिए। अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, लेकिन उस गीत के पहले हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से लिखा है कि फिल्म कल आज और कल का सदाबहार गीत भव्य की गुंजन हसरत जयपुरी के द्वारा रचित, किशोर कुमार द्वारा गाया गया एक मधुर रोमांटिक गीत है। बिल्कुल सही बात है, आपकी प्लेलिस्ट से भी गाने बच जाते हैं, इस बात की हमें बड़ी खुशी होती है, उसका भी आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता ने लिखा है, दो लड़के लड़ते जाएं उनका खेल बढ़ते जाए, इसका उत्तर उन्होंने बताया स्वेटर बुनने वाली दो सलाइयां। हाँ, माँ जब स्वेटर बुनती थी तो कुछ ऐसे ही बुनती थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से उसका उत्तर भी दिया है, हमने जो आपसे पूछा था। हमारे को श्रोता ने बोला है कि एक गुफा में 32 चोर हमेशा करते आपस में शोर, बताइए इस पहेली का उत्तर। तो इस पहेली को उत्तर सहित हमारे एक और श्रोता पहले ही बता चुके हैं, इसका 32 चोर होते हैं हमारे दांत, इसका उत्तर हमको बता है। इसके साथ ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसका उत्तर सहित बता दें, क्योंकि हम तो बड़े अनभिज्ञ व्यक्तित्व हैं, तो अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, वो कौन है जिसकी परछाई नहीं होती रास्ता। अच्छी बात है, ये भी बढ़िया बात आपने कही है। इसके साथ जब हम आगे बढ़े तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पहेली पूछना समझना एक दिमागी विकल्प है, आज के समय में हर इंसान पहेलियों में उलझा हुआ है। बहुत बढ़िया, हमारे एक श्रोता की एक संवेदना हम आपके साथ साझा नहीं कर पाए, जो पिछले गीत के लिए उन्होंने की थी कि हजारों गम हो मेरी जिंदगी में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां माँ साथ हो वहां कोई भी दुख ठहर नहीं सकता, लिखूं जो माँ पे तो स्याही कम पड़ जाए, वो एक हस्ती है जिसके आगे सारा जहान भी झुक जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे श्रोता ने एक बढ़िया सी पहेली लिखी है कि वो कौन है जो पूरे गांव में घूमती है पर मंदिर नहीं जाती, उन्होंने लिखा चरण पादुका। कटोरी के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, कौन होता है बताइएगा जरूर। इस पहेली का अर्थ आपको बताना है, उत्तर बताना है। बचपन की पहेली है जो हम सुनते आए हैं, कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, इस पहेली का उत्तर आप बताइए। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, ये गीत के साथ इसकी पहेली भी हम आपको सुनवा देते हैं। तो ये पहेली है कि नन्ही सी मैं उड़ती जाऊं, चींची करके गीत सुनाऊं, पेड़ों पर मैं घर बनाती, पूछो कौन कहलाती, और इसका उत्तर है चिड़िया। जब चिड़िया पर मैं आपको ये सुंदर सा गीत सुनवा रही हूँ, और इसके पहले मैंने भंवरे पर आपको गीत सुनवाया, हम मान लें तो मधुमक्खियां और जो भी फूलों का रस चखती हैं उन सबको अगर इसमें हम जोड़ लें तो ये सब जीव खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, इनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं विचार कीजिएगा। और गर्मियों के दिन है, चिड़ियों के लिए दाना पानी तो जरूर डालिएगा। गायक का नाम बताइएगा।
1: करती आई चिड़िया, करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। नाचो कालू, नाचो कालू, मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच सिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

साथ हमारे चले बराती। साथ हमारे चले बराती, मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

चुन चुन करती आई चिड़िया, ये गीत तो बड़ा सुंदर सा है जो हम सुन रहे थे। ये फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, दत्तराम का संगीत है, और हमने पूछा था कि आवाज किस गायक की है, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मोहम्मद रफी की आवाज है। और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे हैं, इस गीत के साथ एक शिक्षा तो मिलती है कि ये छोटे छोटे जीव हैं और हम इतने बड़े बड़े मनुष्य, छोटे जीवों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर विचार करते हैं और उन जीवों को बचाते हैं। क्योंकि अगर ये जीव नहीं होंगे तो ये बड़े बड़े मनुष्य भी समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये प्रकृति, ये विज्ञान कहता है। तो चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले हमारे श्रोता ने और भी बहुत सारी पहेलियां भेजी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता ने पंजाबी कहावत पहेली भेजी कि गुड़िया विच तकते नी परने सड़ गए थे कुंवारे अखते नी, शादी की इच्छा रखने वाली ऐसा कुछ कहते हैं। और एक बहुत अच्छा उन्होंने पहेली भेजी है, बूझ मेरा बुझक का सुंदर लाल मेरा सक का सुंदर लाल मेरा भाई मैं सदा कुछड़ पाई। इसका उत्तर उन्होंने घड़ा या मटका दिया है। हर भाषा में अपने अपने अलग अलग बात आ जाती है ना। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लिखा नहीं जाता पर पढ़ा जाता है, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कहा जाता है, आंखें इसे देखकर नम हो जाती हैं, बताओ क्या है जो दिल को छू जाता है। तो उन्होंने

0: अरे कौन श्रोता ने लिखा है, ये जो जेब में रहता है, काम में आता है, बाजार जाके शॉपिंग भी करवाता है, आजकल वो स्मार्टफोन भी है, फोन भी हो सकता है भाई, इसके बिना कहाँ रहा जाता है। जी आपकी इस बात को भी हम मान लेते हैं। एक पहेली है जो हम आपको सौंप रहे हैं और हमने इसकी पहले आपको सौंपी थी कि कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, तो आपने सही उत्तर दिया नारियल। अब एक पहेली सौंप कर मैं बस आपको एक संदेश दूंगाने वाली हूँ। वो पहेली है, हरी थी मन भरी थी, मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। हरी थी मन भरी थी, मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। इसका एक हिंट दे देती हूँ, अरे बड़े शौक से इसे कोयले पर सेक कर उसमें नींबू और घी लगाकर नमक लगाकर हम बड़े चाव से खाते हैं। बताइएगा, तब तक सुनिए ये संदेश।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, चुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और सुरीला सफर कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं बहुत सारी पहेलियां। और अगली पहेली आपको सौंपने से पहले पिछली पहेली जो हमने यूं बुझी थी उस पहेली का हरी थी मन भरी थी, इस पहेली का जो उत्तर हमने आपसे पूछा था उसका उत्तर आपने दिया है भुट्टा। बिल्कुल सही बताया आपने। और इसके साथ ही हम कई सारे और प्रश्नों के साथ चल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न दिया, मुझे पहेली बस का उत्तर पता नहीं होता है तो मैं पहेली बताती हूँ, मैं भी थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ। जी चलिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जहाँ जितने ज्यादा पेड़ पौधे फूल होते हैं वहाँ चिड़िया पंछी भंवरे तितलियाँ दिखते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना सारी समस्याओं, बहुत सारी समस्याओं का हल है। आपने बहुत अच्छा हल बताया और हम सबको ये हल मानना चाहिए। और अभी मौसम भी आ रहा है, जैसे ही बरसात का मौसम आता है, ऐसा कहा जाता है कि बरसात के मौसम के कुछ 10-15 दिन पहले गड्ढा खोद देना चाहिए ताकि जमीन जो है वो सूख जाए, एक कीट रहित हो जाए, और उसके बाद जब गड्ढा सूख जाता है 10-15 दिन में तो फिर उसमें पेड़ लगा देना चाहिए और पानी डाल देना चाहिए, और धीरे धीरे बारिश आएगी, बरसात स्वयं उसको पानी देती रहेगी और 4 महीने में वो हरा भरा हो जाएगा। तो अभी ये काम कर सकते हैं, मौसम आ गया है, गड्ढा खोदने की शुरुआत कर दीजिए। हमारी श्रोता ने लिखा है, हवा में उड़कर आती हूँ, बिना छुए दिल को छू जाती हूँ, मेरे हर सुर में कहानी है, विविध भारती की मैं रानी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। और उन्होंने उत्तर दिया है, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का सुरीला सफर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में हम सब छुट्टियों में दादी के घर जाते थे तो रात को सब अपने बिस्तर पे लेटे लेटे पहेलियां बुझा करते थे, और हमारे बड़े भी हिस्सा लेते थे, और उनमें से एक पहेली, पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ। हाँ, इसका उत्तर उन्होंने बहुत अच्छे से दिया, पानी में रहता है मगर, पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ, तो मगर रहता है पानी में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खामोशी और मौन दोनों ही, एक श्रोता ने पूछा कि अच्छा आपने इसका उत्तर दे दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि बोलते ही क्या टूट जाता है, तो उन्होंने कहा खामोशी और मौन टूट जाता है, बिल्कुल सही। चलिए अब हम चल रहे हैं कि अब बड़ी खूबसूरती के साथ में अगले गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगली जो इबारत में से जो कवि पहेली है वो हम आपको सौंप रहे हैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन हूं मैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन हूं मैं। और इसका उत्तर है घर। और सुनते हैं ये घर का गीत, बस बता दीजिए कौन सी फिल्म का गाना है। और इसके साथ ही आपके जो पहेलियों के किस्से हैं, या किसी ने आपसे कोई पहेली पूछी है, या आपके परिवार में

हम सुन रहे थे ये गीत जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज में, जावेद के बोल और जावेद अख्तर के बोल और कुलदीप सिंह के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि ये गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। बिल्कुल सही उत्तर आपने यहाँ पर दिया है। और इसके साथ ही अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले जो आपने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, सुझाई हैं, संदेश भेजे हैं, वह तो हमें आपको सुनवाने ही है। तो हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी, दीप्ति नवल, फारूक शेख, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, फिल्म साथ साथ, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं, घर वो जगह है जहां आकर हमें सबसे ज्यादा सुकून और शांति मिलती है, सुरक्षित महसूस करते हैं और घर चाहे बड़ा हो या छोटा हमें आश्रय देता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज भी लोग रिश्ता करने जाते हैं तो घर देखते हैं, कैसी बड़ी बिल्डिंग हवेली, वर नहीं देखते पर वर के खूबसूरत बलवान कितना कमाता है, विचार क्या है ये देखना चाहिए। बिल्कुल सही संदेश आपने दिया। और हमारे श्रोता ने, हमने भुट्टे के बारे में पूछा था, उसे छल्ली भी कहते हैं, मक्की भी कहते हैं, अरे वाह इतने सारे नाम है भुट्टे के हमें भी पता पड़ गए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से चिड़िया या गौरैया को कम देखा जा रहा है, हमारे घर में चिड़िया का एक जोड़ा जहां हम दाना डालते हैं आता है, पिछले कुछ महीनों से दो जोड़े आने लगे हैं, उनके लिए मिट्टी का घर टाका है छज्जे पर और आज ही चिड़िया का जोड़ा उसका मुआयना कर रहा था, आशा है कि घर में घोंसला बनाए और उनकी संख्या बढ़ जाए, फिर से उनकी चहचहाट से मेरी आंख खुले और मेरा दिल दिन खुशनुमा हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि बिहार में जब लड़की की शादी होती है तो मायके में ही लड़का लड़की कोहबर में बैठने के लिए लाया जाता है, तब घर की सालियां दरवाजे से को घेरती हैं और दूल्हे राजा से गाने की कुछ लाइनें या कुछ पहेलियां पूछती हैं, पहले तो दूल्हे राजा गड़बड़ाते हैं, गाने की दो लाइन गा देते हैं, फिर उन्हें शगुन भी देना पड़ता है, ये सब प्रेम की बातें हैं ना। हमारी श्रोता लिखते हैं, बचपन में रीत के बहुत से घर बनाते थे, जब दो मंजिला घर बन जाता था तो बहुत खुश हो जाते थे, और वो दो मंजिला घर भी हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं होता था, और टूट भी जाता था तो हम फिर से बनाते थे, टूटते नहीं थे, है ना। अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जितना पास आए उतना कम दिखाई दे, और इसका उत्तर उन्होंने बताया, अंधेरा। हाँ क्या बात है, एक बचपन वाली पहेली भी हमारे पास में आई है, एक खड़ी एक पड़ी एक चमाचम नाच रही, बताओ कौन, और इसका उत्तर है रोटी, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता, ये हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं। और इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ, और वो जो पहेली है बड़ी सुंदर सी है, और इन पहेलियों के स्मृति दौर में हम चल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि हम अपना कहीं ना कहीं बचपन या हम अपने वो दिन जी रहे हैं जो हमने आज के तकनीकी युग में कहीं छोड़ दिए हैं। तो चलिए हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं, और हमने हमारी जो इबारत है उस इबारत में अगली पहेली लिखी है, जेब में रहता काम ना आता, जेब में रहता काम में आता, बाजार जाकर चीज दिलाता, सबको मेरी होती चाह है, बताओ मेरा नाम क्या है, और इसका उत्तर है पैसा या रुपया या धन। जी बिल्कुल, सबको चाहिए होता है, इसके अलावा इसके बिना कुछ काम होता नहीं है, लेकिन जब यही पैसा लालच बन जाता है तो इस लालच के कारण बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो पैसा जो है वह एक सोच और समझ के साथ आना चाहिए, और सोच और समझ के साथ संभालना भी चाहिए, है ना। चलिए मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूँ, आप बताइएगा कि आपको लालच आया था कभी पैसा देखकर, किसी उम्र में तो आया होगा, किसी के पर्स में रखा पैसा देखकर लगा होगा काश इतना मेरे पास होता। अरे मैं अपना बता देती हूँ, मैं तो बचपन में सोचा करती थी कि काश कोई बड़ा रईस आदमी आए, वो हमसे कहे चलो हम तुम्हें इस शहर में ले चलते हैं, बड़ा बना देते हैं, बैठे बैठे बड़े बनने के ख्वाब सबके होते हैं, है ना, आपके भी होंगे मेरे भी थे, पर बाद में सत्य का पता चला। चलते हैं अगले गीत की तरफ, बताइएगा ये गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे पापा कहते हैं फिल्म का यह गीत, और हमने पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया है, परंतु हम गीतकार जावेद अख्तर इसके हैं और राकेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हमारे श्रोताओं ने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही दिया कि कुमार सानू की इस आवाज को हम सुन रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था कि आप बताइए कि आपको लालच किस चीज का है, तो हमारी श्रोता लिखती है मुझे तो पति के पॉकेट से मिलने वाले पैसे का लालच आज भी है, जब भी उनके कपड़े धोती हूँ मेरी नजर पॉकेट पर ही रहती है, कुछ सिक्के भी मिल जाए तो खुशी होती है, वो नोटों की गड्डी से भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, और ये तो हमारा अधिकार में भी आता है ना जी। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। इसका उत्तर मुझे पता है, आपने उत्तर नहीं दिया था लेकिन मुझे पता है, आसमान। और मैं आपको अगली पहेली सुनाने से पहले एक पहेली दे रही हूँ। मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे, मैं हरी मेरे बच्चे काले है ना, और मुझे छोड़ मेरे बच्चे खाले, बताइएगा ये कौन है। मैं हरी हूँ मेरे बच्चे काले हैं, मुझे छोड़ दे और मेरे बच्चों को खा ले, ये उत्तर है, इसका उत्तर आपको देना है। और इसके साथ ही अगली पहेली हम आपके बीच में पढ़ने वाले हैं, और अगली पहेली के साथ में जो अगला गीत है उस अगले गीत के गायक कलाकार का नाम भी आप बता दीजिएगा। हम आपके बीच में बस इस पहेली को पढ़ देते हैं। न खून का रिश्ता है न घर का नाम, फिर भी रहता हरदम साथ, हंसाए खिलाए दुख भी बांटे, बताओ कौन है इतना खास, और वो होता है दोस्त। चलिए इस दोस्ती के नाम ये गीत, बताइए गायक कलाकार कौन है।

आप सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, मोहम्मद रफी की आवाज का था यह गीत। और आपने बहुत सारे संदेश भेजे, उन सब संदेशों को हम पढ़ देते हैं जल्दी से। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे, पांच भाई एक साथ भूसा मारता है भात भी खाता है, पांच उसके साथ हैं दोनों मिलकर करते हैं नमस्कार, बिल्कुल सही, और दोनों हाथ का पंजा इसका इन्होंने कहा है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाइए, इनकी भावना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जब भी लॉटरी वॉटरी की टिकट रखती तो उनको लगता है कि विदेश यात्रा मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। देखिए लालच तो सबको होता है, पर ये लालच कोई थोड़ी सी भावनाएं होती है, भावनाओं को अपन देख सकते हैं। अब मैं अंतिम पहली की तरफ जा रही हूँ। सागर जिसके चरण पखारे, हिमालय जिसका ताज कहाए, अनेक भाषाएं अनेक रंग, बताओ वह देश कौन सा कहलाए। और हमारे

0: देश का नाम है भारत। भारत, भारत ये अद्भुत देश जो बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है और जिसका ताज, जिसके सर पर मुकुट है हिमालय जैसा और जिसके चरण प्रतिदिन पखारे जाते हैं समंदर से, ऐसा देश वहां के अलावा और क्या हो सकता है। ये गीत मैं आपको सौंपती हूँ और बताइएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है और पहेली वाला कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, बड़ा मजा आया होगा मुझे ऐसा लगता है।
1: जब जीरो दिया मेरे भारत ने,

0: देता न दशम लो भारत तो यू चांद जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले।
1: चुप क्यों हो गए? और सुनाओ।

समय था जब खुशियां बहुत छोटी छोटी चीजों में मिल जाया करती थी। फुर्सत के क्षणों में परिवार के साथ बैठकर बोलना, बतियाना, खाना पीना, हंसी ठिठोली, बातें करना, छत पर देर तक बातें करना, चांद सितारों को निहारना, त्योहारों की हलचल, इन सब में हमारे चेहरे पर खुशी और मुस्कान खिली रहती थी। साधन उस समय सीमित थे, लेकिन प्रेम और अपनेपन की मिठास खुली रहती थी। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। हमारे मन में खुशी कम होती जा रही है, लेकिन खुश रहना कितना जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, आज हमें ये सोचने की फुर्सत नहीं है। जब हम खुश होते हैं तो मन में जैसे तरंगे आती हैं, मन में ऊर्जा पैदा होती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन उड़ जाता है मुक्ताकाश की ओर, और पांव जमीन पर नहीं पड़ते।

खुश न रहने का कारण ये है कि जीवन की रफ्तार, जीवन की गति बहुत तेज हो गई है। हर कोई व्यस्त है, सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह हमें बहुत सारी उपलब्धियां तो देता है, तो दूसरी ओर हमारे अपनों से हमें दूर करता जा रहा है। एक दूसरे के लिए हमारे पास समय कम होते जा रहे हैं, साथ रहते हुए मन की दूरी बढ़ती जा रही है। अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आगे बढ़ने की रेस मन को थकाने लगी है। रिश्तों में आत्मीयता और दिलों की चमक, मन की मिठास धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी है।

खुशी हमारे भीतर ही विद्यमान है, हमसे अलग नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम घर, बाहर, समाज और अपने कार्यस्थल पर अपनी मुस्कान और अपनापन जरूर बांटें, अपनी संवेदनाएं बाहर निकालें, सबका आदर और सम्मान करें। अपनी संवेदनाओं को कभी कुंठित नहीं होने देना चाहिए। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी के सुख दुख को बांट लेना, सहयोग के दो शब्द कह देना, मीठी बोल बोल देना, ये सभी चीजें जीवन को जीवंत बनाए रखता है।

तब हमारे स्वयं के चेहरे पर भी सुकून और खुशी लौट आती है, और जब हम खुश होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड खुश होता है। पेड़ पौधे खुशी से झूमते नजर आते हैं। खुश रहने के नियम बताए गए हैं, सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य का ध्यान, दूसरों से तुलना न करना, वर्तमान में जीना, माफ करना और संतोष करना। इन नियमों का पालन मानसिक शांति जीवन में चेतना लाती है। जीवन खुशियों से भर जाता है और जिंदगी को पूरी तरह से प्यार

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतारिणी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रूपए का एक स्मारक सिक्का और 5 रूपए का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर

0: डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के

0: बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे, राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: ಅಣ್ಣ ಸಂಗ ಅಣ್ಣ ಸಂಗ ಅಡಿಯಾಲಾಗಿ.
1: हम सुन रहे थे बड़ा आदमी फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ. आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन. कार्यक्रम है सदाबहार मन में. आइए सुनते हैं डाक फिल्म से यह गीत. लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है, शंकर जयकिशन का है संगीत.

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आत्मा को चूमे जब से नहीं थे ये जहाँ आरज़ू हमारी आसमां को चूमे

आ गई मंजिले, देख के शबाब के फासले, खुद ब खुद सिमट गए फासले। सारे नजारों में फूलों में तारों में हमने ही जादू भरा, हम जल्द नहीं तो ये जहां।

0: हम हिंदुस्तानी फिल्म से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में साहिल लुधियानवी की बोलों से सजे हुए उषा खन्ना के संगीत के साथ संगीतबद्ध इस गीत को। आइए सुनते हैं ये संदेश। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूली बिसरी गीत।
1: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। मॉडर्न गर्ल इस फिल्म का यह गीत सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में, गुलशन बावरा के बोल और रवि के संगीत के साथ आइए सुनते हैं।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलो शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत जो कि है घराना फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और रवि का है संगीत।

आसान है जाना महफिल से, वो कैसे जाओ के निकल कर दिल से। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार।

0: आई फिर रात रात अब पतला के क्या करूं मैं, आई फिर रात रात अब पतला के क्या करूं मैं, याद आएगी ये बातें तुम्हारी तड़पे की मोहब्बत हमारी, मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर।
1: जिन्न थारा गुजारा थन्न में

सुन रहे थे भाभी की चूड़ियां फिल्म का यह गीत आशा भोसले मुकेश की आवाज में नरेंद्र शर्मा के बोल और सुधीर फड़के ने इसे संगीतबद्ध किया। इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली।

0: अगले कार्यक्रम सुनने वाली हमारी बहुत सारी सखियों, सहेलियों और अन्य सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार। और मेरा भी अपने सभी जो भी सखियां हैं, जो भी सखा हैं, सभी सभी को, सभी श्रोताओं को और चंचल जी आपको नमस्कार। आरती नमस्कार। हमारे सभी सुनने वाले बड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम का। और बहुत सारे श्रोता हैं जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं, लेकिन कुछ श्रोता हैं जो नहीं जुड़े हैं
1: जी।
0: तो आज किन विषयों पर हम बात करेंगे ये बता देते हैं। तो गर्मियों का समय है और पानी का बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग अनायास ही
1: बिल्कुल
0: बहुत सारा पानी खर्च कर देते हैं, तो किस तरह से इस पानी की बचत बहुत महत्वपूर्ण है, करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे।
1: और मौसम को भी हो, पानी तो हमें चाहिए चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और पानी के बारे में आप हमें बताइए, आप किस तरीके से पानी की बचत करते हैं आपको
0: जी।
1: और लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं इस चीज के लिए। और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत ज़ीनिया पर्सी मास्टर जी की, जो की संस्थापक है ज़ीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस की। और साथ ही हम हल्की फुल्की बातों में करेंगे बहाना ऐसा कौन सा है जो अक्सर काम कर जाता है।
0: बिल्कुल, ये बात तो बड़ी कहते हैं कि एक रोचक भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए या सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई बहाना उनके पास में तैयार होता है।
1: और बहुत सारे लोग बहाने तो बनाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं कि हाँ, झूठ बोल रहे, बहाना बना रहे हैं। लेकिन आप कैसे, कौन सा बहाना बनाते हैं जो कभी पकड़ा नहीं जाता है,
0: और कौन सा ऐसा बहाना है जो अक्सर काम आता है आपके, आपको सुरक्षित रखने के लिए।
1: बिल्कुल,
0: बहाने क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। और मुहावरे की आज हम एक बात करते हैं, तो आज हमने जो मुहावरा चुना है वो है आम के आम,
1: गुठलियों के दाम।
0: यानी
1: वैसे भी आम का मौसम है ना, आम खाए जा रहे हैं।
0: हाँ, तो दोहरा जो फायदा है उसकी बात होगी, लेकिन भाई अब आम के आम गुठलियों के दाम तो जानकारी होगी, मनोरंजन होगा और गीत भी होंगे।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, मैं ये कहूंगी अपने जो भी श्रोता है, सखियां हैं, जो भी सखा है, कि आप उसमें आम के आम जो गुठलियों के दाम मुहावरा है ना, खाली इसका अर्थ ही मत लिख के भेजिए, क्योंकि अर्थ तो चलिए हमने समझा, आप थोड़ा सा उसके बारे में और रोचक बना के भेजिए उसको।
0: बिल्कुल, सुनने से ही पता लगता है कि दोहरे फायदे की बात हो रही है, तो उसका अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन आप कि जीवन में दोहरा फायदा किस तरह हुआ, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम,
1: और आपने किसी को ऐसा दोहरा फायदा पहुंचाया हो तो वो भी बताइए।
0: तो भाई कार्यक्रम में कैसे होते हैं आम के आम गुठलियों के दाम,
1: गीत सुनने से।

0: तो कोरा कागज यानी कि बहुत सारी चिट्ठियां पहले हमें मिला करती थी, लेकिन अब हमें संदेश मिलते हैं हमारे सुनने वाले
1: और अभी हम जो सेगमेंट सबसे पहले लेने वाले हैं वो है हमारा सखी विशेष, यानी अपनी सखी विशेष के बारे में कुछ बातें बता,
0: हम बात करेंगे जीनिया पर्सी मास्टर के बारे में।
1: जी, तो जीनिया पर्सी मास्टर भारत की एक जानी मानी महिला उद्यमी है जो बिजनेस और फाइनेंशियल रणनीतिकार है। और जीनिया एक व्यावसायिक परिवार से आती हैं, उनके परिवार का लॉजिस्टिक्स और बिजनेस क्षेत्र में लंबे समय से संबंध रहा है।
0: जीनिया पर्सी ने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध गिलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और रेवेन्यू मैनेजमेंट में पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने लंदन में फिट्ज़ी विलियम इंस्टीट्यूट से इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया हुआ है।
1: और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुबई और अन्य स्थानों पर होटल इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने प्री ओपनिंग टीमों में भी काम किया जिससे उन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का व्यवहारिक अनुभव मिला। और साल 2013 में उन्होंने अपना फ्रीलांस इवेंट से शुरुआत की।
0: और इससे पहले जीनिया इवेंट्स का, इसे पहले जीनिया इवेंट्स कहा जाता था, बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी जीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया। और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारियों के क्षेत्र में कार्य करती है।
1: जी, उन्हें विशेष रूप से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग, कॉर्पोरेट इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स, लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सेवाएं प्रदान करती है।
0: और उनका काम वी इनवाइट यू, यू ओन इवेंट, इस विचारधारा पर आधारित है, यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद ले और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाल लेगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं।
1: जी, वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट्स में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी। और इसके बाद उन्होंने स्वयं का ब्रांड भी शुरू किया। जीनिया सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही है और पर्यावरण तथा CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें गतिविधियों में वो भागीदारी करती रही है।
0: ये रही बहुत अच्छी जानकारी उनके बारे में और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली, और अब जो बातें होंगी वो होंगी पानी के बारे में, पानी की बचत के बारे में।
1: बिल्कुल, पानी, और देखो पानी का जो कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
0: पानी का कोई रंग नहीं है फिर भी हर एक की जरूरत है। कहते हैं कि जिंदगी अगर है तो पानी सबसे जरूरी चीज है हमारी।
1: और जितनी भी सोचिए सभ्यताएं बसी, जितनी भी हमने प्रगति करी, वो सब कहां, सिर्फ नदियों के किनारे बसी
0: जी,
1: जिससे कि हमारे देखो जीवन के लिए जरूरी क्या चीज है, पानी। और अभी कुछ रिसेंटली हम लोगों ने अभी कुछ खबरें भी सुनी कि किस तरह से पानी नहीं मिलने की वजह से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये सोचिए, ये हमें जागरूकता का विषय भी है कि अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास कल भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही बात है, जल है तो ही कल है। जिस तरह हवा बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही पानी जरूरी है। और बहुत सारी नदियों में पानी का जल स्तर दिन पर दिन कम होता जा रहा है। कई बार हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं, जिन जो हमारे पानी के स्रोत हैं उन्हीं को हम गंदा कर देते हैं। वहां पर जो कल कारखाने हैं उनसे पानी गंदा हो जाता है, या फिर हम जो प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं, हम बहुत सारी जगहों पर जब घूमने जाते हैं, झील नदी समंदरी किनारों पर हमें जाकर बैठना थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर हम बहुत सारी गंदगी छोड़कर आते हैं। लेकिन बात अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पानी जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है उसे हम किस तरह से यूं बेकार की चीज समझकर वेस्ट करते रहते हैं, और इसका खामियाजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा।
1: और लोग भुगत भी रहे हैं। सोचिए एक जगह हमें अभी यहाँ पे अगर सहूलियत से पानी मिल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग कितनी कितनी दूर तक चल के जाते हैं, और दो दो बूंद पानी के लिए तरसते हैं कि वहां पे अगर अगर उनको पानी एक घड़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं वो चीज को।
0: इसीलिए देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करना एक अच्छी बात है, फिर वो पैसा हो या पानी, इसके बिना सारी दुनिया है फानी। पृथ्वी पर बसे हर एक जीव के लिए पानी प्राथमिक जरूरत है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है और यही सबसे बड़ा गम है। इन्होंने जो बातें लिखी है ना उसे इस तरह तुकबंदी में होकर बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं ये। इसे बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं कि जल के बिना जल बिना जरूरी उपयोग के इसे वेस्ट ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना जरूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकता है। यदि हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल बिन मछली जैसे तड़पती है, वैसे ही कभी हमें भी तड़पना होगा।
1: बिल्कुल, और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है। सूखी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार है। मत छीनो इसकी सांसें, मत इसका मान हरो, जल बचेगा तो ही जग में मानवता का श्रृंगार है।
0: बिल्कुल सही है आरती, क्योंकि जल ही जीवन है। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो कह सकते हैं कि पानी है
1: जी।
0: पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए भी, ये कर्म है, घर को अपने आप को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए भी पानी जरूरी है, और पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी जरूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज्यादा, उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल, और चंचल जी सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है
0: जी,
1: ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। तो ये सोची कि अगर हम यहाँ पे अगर उस जल को ही खत्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को जरा सा भी ना बर्बाद करें। जैसे छोटे बच्चे, उनको अकल नहीं है, तो अगर उस चीज को वो करें तो उनको समझाइए, सिखाइए। अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे।
0: इसी पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें, कपड़े बर्तनों को धोया पानी कपड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें, मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की मात्रा कम खर्च होगी। और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी जरूर से रखें, पेड़ पौधे लगाएं, आसपास गड्ढे करें जिससे उनमें पानी का संचय हो सके, और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह निकासी करे हुए पानी को गड्ढों या पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत हम कर सकते हैं।
1: बहुत जरूरी है। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि आंखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदायी होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है, और जहां फिर प्रेम का अंकुर पनपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में तीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है।
0: सही बात है, बारिश का जो मौसम है वो सिर्फ 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रहता है।
1: बिल्कुल,
0: इसके बाद के जो 8 महीने हैं उसमें पानी नहीं बरसता। इसी पानी से हमें बाकी के 8 महीने निकालने हैं, इसीलिए बचत बहुत जरूरी है। लेकिन इस समय कार्यक्रम में गीत सुनना भी जरूरी है।

0: तो अब हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का महत्व तो बहुत ज्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि घर में नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है ये हमारे आने वाले लोगों को पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पे करके, टाइमर लगाइए उसमें। और अगर किसी कोई इस तरीके के मतलब जो उन्होंने लिखी है इस तरीके की चीजों का पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं, घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये उन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद जो पृथ्वी का 70% पानी है वो जो 70% पानी है मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो वही वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए, उसको ऐसे नहीं कि आपने से छोड़ दिया। अगर कहीं आपको बाहर भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने को।
0: बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है जब वो कपड़े धोती है या बर्तन धोती है तो नल चालू है, इधर कपड़ों पर वो साबुन लगा रही है या बर्तन को साबुन लगा रही है और पानी लगातार बह रहा है, तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल चालू है, यहाँ उधर काम चल रहा है, तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं आपको अपना रेजर नहीं धोना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल को। इसी तरह से महिला पुरुष बच्चे ये
1: सब छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं तो हम पानी थोड़ा सा पानी पिए, दो घूंट पानी पिए और पानी बाकी फेंक दिया,
0: आधा ग्लास पानी
1: और आधा पीने लायक पानी होता है, कितना कीमती पानी है उसको हम फेंक देते हैं।
0: कई बार जब हम किसी समारोह में जाते हैं, किसी आयोजन में उत्सव में जाते हैं तो आजकल पानी की बोतल देने का सबसे ज्यादा चलन है, तो वहां भी आधी बोतल पी के आधी बोतल को हम फेंक देते हैं, तो ऐसा ना करें। आप बची हुई आधी बोतल पानी को अपने पास ही रखिए ताकि दोबारा जरूरत पड़ने पर एक नई बोतल का इस्तेमाल करने की बजाय आप उसी बोतल के पानी का फिर से इस्तेमाल कर सके। और इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो ये अन्य ग्रहों की तरह सूखा और वीरान होता। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी मांग है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत सीमित है और बढ़ती आबादी के साथ इसका संकट भी गहराता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाना पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि इसकी बर्बादी गंभीर परिणाम ला सकती है। घर में किसी भी नल या पानी से पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक करें। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है, तो अगर सभी जागरूक हैं तो जो जागरूक नहीं है उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। आगे भी उन्होंने लिखा है कि आजकल सभी घरों में वाटर प्यूरिफायर लगे हुए होते हैं और सबसे अधिक पानी की बर्बादी यहां होती है, तो कुछ लोग इसे संग्रहित करके पौधों में डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
1: और अगर आप कपड़े धो रहे हैं या इस तरीके का अगर पानी आपका बच रहा है या आपने सब्जियां धोई तो वो पानी जो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अलग से आपको वहां पे पाइप लगा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी होती है पाइप लगा के जब हम पानी डालते हैं।
0: इसी तरह से बहुत से लोग एसी लगाकर जब घर में आते हैं तो उसके पाइप से जो पानी रिस कर धीरे गिरते रहता है और बाल्टी में जमा हो जाता है, तो उसको भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार छत या आंगन धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो इस तरह की आप छोटी छोटी चीजें भी करेंगे ना तो बहुत सारा पानी बचेगा और बहुत जरूरी है अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अब अगली जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा तो इसलिए हम उस युद्ध को रोक सकते हैं होने से।
0: बिल्कुल
1: तो उसके लिए हमें, क्योंकि अब देखिए खरीद के हमें पानी पीना पड़ता है, अगर हमें साफ पानी चाहिए तो जरूरी है पानी की बचत करनी।
0: तो बातें और भी बहुत सारी करनी है लेकिन इस समय घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि ये भी छोटा सा अंतराल।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुनहरी धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूं आरती श्रीवास्तव।
0: और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में। तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है। पानी की कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब नहाने नहाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती है ना, तो बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। तो उससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है, जो बर्बाद

0: मिल रही है जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहां से मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते, पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से जब वर्षा का जल हमें कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहां जल संकट अति का बहुत ही ज्यादा है, वहां चाय की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत होती है। ऐसा हमारे श्रोता भी लिखकर बता रहे हैं कि चाय या अन्य चीजें वहां सस्ती मिल सकती हैं लेकिन पानी होता है बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद कर वो लोग लेते हैं।
1: और जब से मैं बताऊं कि मैंने तो ये चीज खबर सुनी तो सच में अजीब से लगा। अब जब भी पानी का इस्तेमाल करती तो खुद ही एकदम से सचेत हो जाती हूँ बस सोच के कि सोचो उस समय उन लोगों को सिर्फ दो बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है हम पानी पी रहे हैं फेंक रहे हैं और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली है या पानी दो दिन नहीं आने वाला तब लगता है और अब कैसे होगा अब का ऐसे काम चलेगा, तो हमें सोचना चाहिए इसी तरह से समय से आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं आए तो हम क्या करेंगे।
0: एक दिन की कटौती में अगर हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर ये कटौती पानी को बहुत जल्द से अगर घट गया तो बहुत ज्यादा अगर होने लगी तो कितना हम परेशान होंगे, उस परेशानी से बचने के लिए महत्व इसका हम बता रहे हैं। और आप सुन लेते हैं गीत।

0: क्या हुआ, जब एक किसान ने आम तो बेचे ही, आम बेचकर पैसे कमाए, लेकिन जब गुठलियां बच गई वो एक नर्सरी को बेच दी ताकि नए पेड़ आम के लगाए जा सके। तो यानी कि जो मूल चीज है उससे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उससे भी आपको मुनाफा मिला, दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा। इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम,
1: गुठलियों के दाम उसने ले लिए। और खाली उसी ने नहीं ली, पेड़ लगाने से सबको फायदा हुआ, तो बहुत अच्छी चीज है।
0: तो ये तो समझ कहा, बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या अनुभव रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है, जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना समय जो प्रसार करने के साथ साथ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब आम के आम और सखी सहेली के नाम।
0: हमारे खबर लिखते हैं कि आम तेन दिन हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो ये उगा देंगे। तो हो गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम, एक पंथ दो काज की तरह ही होती है ये कहावत।
1: जी बिल्कुल, एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इसमें इसे अंग्रेजी में टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी कहा जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। मतलब एक ही मुहावरा है, उस मुहावरे को बहुत कई तरीकों से कहा जाता है।
0: दो काज, आम के आम, गुठली के दाम और एक तीर से दो निशाने, लगभग एक जैसा ही अर्थ है।
1: बिल्कुल, और व्यवहारिक जीवन में इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार, तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है तो आम के आम और गुठलियों के दाम तो सच में एकदम सही बैठा। उन्होंने आम खाया और गुठलियों से उसके छिलकों से अचार भी बना लिया।
0: और आगे एक श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है। दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोकप्रिय भी है।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाषा की सुंदरता वृद्धि में मुहावरों और कहावतों का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। आम के आम, गुठलियों के दाम का अर्थ ही है उपभोक्ता के पूरे पैसे वसूल। वार्तालाप या कहानी लेख में विषय संग वस्तु का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वस्तु अपनी उपयोगिता, गुण और महत्वपूर्णता की उपस्थिति दर्ज कराई देती है।
0: और हमारे श्रोता तैयार हो जाए भी अपने बहाने बनाने के लिए, जिन्हें वो अक्सर काम में लेते हैं, लेकिन तब तक एक गीत सुन लेते हैं।

0: जियो नहीं देखा मैं करूँ क्या।
1: हर प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं देना था, उसकी नजर पे भी तू दिल से नहीं जाता।
0: हर प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं देना था, उसके नजर से भी तू दिल से नहीं जाता।

0: आरती, अक्सर हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ बहाने मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट पहुंच रहा हूँ या 5 मिनट पहुंच रही हूँ, या अगर फोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, मेरा तो फोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कहीं अगर समय पे ना पहुंचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया, और अगर समय पे ना पहुंचे या फोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात हुई मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत जरूरी काम आ गया, फोन की बैटरी खत्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात है पढ़ने वाली।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, सभी को उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है, अगर बहाने में वफाए हो तो तूफा भी किनारा है, वरना साहब के गुस्से से गिरती बिजली का नजारा ही नजारा है, सामने वाला आसानी से विश्वास कर सके, ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सकें। ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहां करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए।
0: और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें, वो कहेंगे कि मैडम कर तो लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, अब क्या कहें, और शिक्षक बहाना एक्सक्यूज, तो किसी काम करने के लिए बचने के लिए अपनी गलतियां छिपाने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए ये एक कारण होता है, यानी कि अलग अलग तरह का बचाव है।
1: बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ लीजिए बहाना है।
0: बहानों का इस्तेमाल लोग स्थिति से बचने के लिए, टाल मटोल करने के लिए, या असफलता को सही ठहराने के लिए करते हैं, जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तबियत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई जरूरी काम आ गया, वगैरह वगैरह।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं, इस विषय पर एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी न कभी बहुत लोग अक्सर करते हैं, और वो भी सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित। अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना ही है।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, और अक्सर बच्चे ये बहाना करते हैं। और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है, तो ये कहूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं है,
1: अक्सर होता है ऐसा। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का, हमारे जो श्रीमती जी है वो एक नंबर है, कुछ काम कहो तो बहाना बनाती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि, और वो स्वयं काम कर लेता हूँ, और फिर वो कहती है मैडम अरे वाह तनिक थोड़ा धैर्य रखते तो हम कर ही देते, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने नोक जोक प्यार उसने है तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करती है, भाई आप काम कर देंगे तो तारीफ तो आपकी होगी। बस अच्छी चीज है ये, इस तरीके का बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा काम का हाथ बता देते हैं।
0: हमारे श्रोता ने लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के नाम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है, मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दी कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा, और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और

0: वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था।
1: हाँ, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो आपने बहाना बनाया था।
0: जी,
1: एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो उस वक्त उनको सही लगता है। और मेरे साथ भी एक मजेदार घटना हुई। मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था। सुबह तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई। शाम को जब उसका फोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज थी। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार मुझे याद था, बस दिमाग से निकल गया। सच कहूं तो अरे हां मैं तो भूल ही गई थी, या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया, ऐसे बहाने हैं जो में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं। मैं करती हूँ अक्सर, हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं।
0: तो चलो वे गीत सुन लें।
1: बिल्कुल सुनते हैं।
2: कहीं करती हो वो मेरा इंतजार, जिसकी तम

0: तो आरती तुमने कभी कोई बहाना बनाया है? बताओ मुझे।
1: बनाए तो बहुत सारे बहाने मैं आपसे बना लेती हूँ बहाने, लेकिन अभी मैंने बनाया था कि ये वाला कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मैं उठा नहीं पाई।
0: ये जो है ना फोन साइलेंट पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था। आजकल क्योंकि जब कहते हैं भाई फोन करना भूल गए, तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है, या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था, यही बहाना बहुत होता है। तो अब बहानों की बात चली है तो बताएं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं, इससे हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे किसी से अगर हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं, और किसी से मिलना चाहते हैं तो बहुत बहाने हम निकाल ही लेते हैं। बस बहाने की ही बात है, मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं, और यही बता रहे हैं।
1: और एक हमारी श्रोता जो लिखती है कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, वो लोग कहीं घूमने गए, उनकी देवर की लड़की इतवार को मेरे साथ मेरे ही घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ, इतनी गर्मी हो रही है, मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के जा रही हूँ, इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई। ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, लेकिन आप उनको पता चल गया होगा, उन्होंने सुना होगा प्रोग्राम,
0: अगर वो रेडियो सुनते हैं उन्हें रेडियो पर बात पता
1: कि आपने बहाना बनाया था खाना बनाने से बचने के लिए।
0: तो और हमारे श्रोता ने कहा है कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहां पर था, और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार बहाने बनाने पड़ते थे। जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई और वो यहाँ बन भी नहीं पाती है, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर चीज लानी पड़ती है तो बहुत पैसे लग जाते हैं। और इसी तरह बहाना बनाकर बच्चों ने जब साइकिल मांगने की जो जिद थी वो छोड़ दी।
1: बहुत बढ़िया बात है। और हम इस समय एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम पर भी हमारे एक सखी उन्होंने लिखकर भेजा है। कहती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे, उसमें जब हम आम खा चुकते थे तो गुठली को मेरी दादी एक टीन के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी, बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुठली इकट्ठा होती रहती थी, और फिर बरसात में भी मेरी भीगती थी, जब बहुत सी गुठली इकट्ठा हो जाती थी तो उसी डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुठली को तोड़कर उसके बीज को नमक लगाकर खाते थे। यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाए गुठलियां भी खाएं।
0: अचार में भी कई बार गुठलियों का प्रयोग किया जाता है, और गुठलियों में बड़ा अच्छा तो स्वाद होता है लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है। हमारे पुराने फिल्मी गीता में भी तो सुनने का
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: दिल तो हमारा भी नहीं भरा अपनी सखियों से बातचीत करते करते, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें जाना होगा, इसलिए ये था इस कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आतिश श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही है जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था,

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोता, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लगा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जाना चाहेंगे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
2: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
1: अच्छा।
2: तो वहां पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहां पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफर है चेन्नई से वहां, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
1: अच्छा, हाँ। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से?
2: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफर हुआ करता था हर तीन साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज जो थी वहां से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं खत्म

0: में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया तो मेरी वालदा कहने लगी नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं नहीं इजाजत दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो जो प्रोड्यूसर थे वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से जमींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, फिल्में कर ली तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज इजाजत दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो अभी तक कोई लड़का नहीं है, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहां से सिलसिला शुरू हो गया।
1: कुछ बोल याद है उस डांस के जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
0: पूरे तो याद नहीं है। हीरवा का सागरो रंगा चिन्नन्ना आगे।
1: क्या बात है, तो बहुत सुनीली भी। अच्छा वो फिल्म कौन सी थी?
0: उसका नाम था रोजलू माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज विच लिटरली चेंज माय लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे आपको पता है जब आपका गाना आता है और खत्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में। हाँ तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरे नहीं समझ में आया दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे उन्होंने कहा पॉसिबल है क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड के एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
1: क्या कह रहे?
0: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में। तो हम हैदराबाद गए तो वहां इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहां थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे तो काफी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर। तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग। अच्छा अच्छा। तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है वो बहुत कामयाब हुआ और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुसलमान मुस्लिम लड़की होगी। बोले नहीं है भी मुस्लिम तो उर्दू बोल सकती है। तो उन्होंने कहा जरूर बोल सकती है क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरह मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता। तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके जरिए एक मीटिंग अरेंज की तो वहां मुलाकात हुई। तो कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर एक 10-15 मिनट में और मेरी वालिदा थे फिर चुप। कुछ खास कहानी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुंचे तो इस चीज को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से
1: तो उसके बाद में आपको सीआईडी मिली।
0: सीआईडी पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो सीआईडी और प्यासा की बातें करें उसके पहले हम वेदरी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को

0: कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है इसमें?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं।
0: तो आपने कह दिया?
1: हाँ मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे जो डायलॉग राइटर थे उनको बहुत बुरा लगा, बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज्यादा हेवी है और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं, तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत तो दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली,
0: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
1: नहीं मगर जब वो गुजरे तो उनका डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना, उसके बाद चौदह के चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म, फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया अप्रिशिएट और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
0: अच्छा विजय जी, साहब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अबरार एलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
1: अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना, तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में, क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरदत्त जी नहीं थे तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे, मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरदत्त जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए इस तरह से किया जाए।
0: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी?
1: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया बंगाली नॉवल से तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं, तो गुरदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल, तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा, तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं? तो बोले नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही एक एक मैच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं बोले वो नहीं आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं कुछ तो कोशिश तो करते हैं, तो उन्होंने वैसा गेटअप देके स्टिल फोटोग्राफ्स लिए। लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे वो हमने सब ने स्टिल देखी, मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ अच्छी लग रही हूँ, तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं गुरदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं।
0: इस फिल्म का शुमार बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
1: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ उसके बाद गुरदत्त जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात खत्म हो गई, तो जब अबरार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके नहीं देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे कि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करें, मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी। तो गुरदत्त उन्होंने जाके गुरदत्त जी को बताया तो उनको ताजुबा भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं चौदहवीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है टाइटल रोल नहीं है क्यों करेंगी आप? तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है मुझे कोई इतराज नहीं है, मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है जबा का रोल डिफरेंट डेफिनेट कैरेक्टर है, तो बोले आप सोच लीजिए, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं अब्रार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी, तो इसलिए मैंने किया।
0: तो इसका जिक्र चला है, क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो।
1: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी। मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि ना जाऊं सैया छुड़ा के बैया।

0: अभी इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौधरी का चांद, एक बड़ी वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में, तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी ने सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरुदत्त जी मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर, तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ, हाँ इसके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरुदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे CID बनाई, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर

0: चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूंगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं। अगर सादिक बाबू करेंगे तो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा,
1: क्या कहने
0: यू नो, और खासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ से, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरदेव जी बैठे कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
1: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
0: नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय ली जाए, अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी भी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं, एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रही हैं कमल शर्मा।
1: देव साहब के साथ में कैसी जुड़ी थी आप?
0: देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो सीएडी में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बट ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस वेरी डिसेंट और बहुत अच्छा था उनके साथ।
1: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
0: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में, तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर, लोग के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था, तो देव मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे, देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चलाऊं, ठीक है। वो एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा। मैंने कहा क्या मतलब आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते, नहीं एक तो फॉग है, मैंने कहा हाँ फॉग तो है मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है, तो बोले मैं चश्मा लगा था, तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगा, तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया, तो मैंने कहा अब क्या होगा, तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेडेस को पीछे बैठने दो और तुम मुझे बताते रहना राइट में लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है, फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता, मैंने कहा तुम मरवा दिया आपने हम पीछे भी नहीं जा

0: लोगों को। तो मैंने कहा विजयानंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खाई गए से पहुंच गए। तो दैट वाज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था।
1: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए?
0: खोया खोया चांद।

0: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया और इसके पहले हमने बात की गाइड की, और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्माए. वैसे गोल्डी साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था?
1: आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था. उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया, तो वो एकदम परफेक्ट था. तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहां शूटिंग कर रहे थे, कुछ खंडर थे वहां पर, वो ऊंची सी दीवार थी, कुछ 6-7 फुट की और ज्यादा चौड़ी भी नहीं थी, और बीच में एक गैप था. तो वो कहने लगे, आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रही हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए, मगर खुश है. तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती है, जप कर जाती है. तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है. मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना. मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा. खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं.
0: गाइड की पूरी बात करें तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं. वैसे जी, उसमें आपने रोजी का एक करेक्टर किया था, और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रूसी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी, ट्रेडिशनल इमेज, उसको तोड़ा उसने. वो विद्रोही

0: एक और आपकी बड़ी ऑफबीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा उर्षी और अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से, जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, सरदार आवाज के लिए जो भी डायलॉग सुनने जाते हैं उसमें उनको गुम्बा बना दिया गया और उसमें जयवंत भी थे आपके साथ में, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मजा आया। और हाँ मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी साथ हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं और सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से, तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो होंगे ही, और जब पैकअप हो जाता था कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे मगर उनके 2 शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो भागते हैं तो तब तक वो ऊन तो निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का जो बहुत अच्छा था, तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा था बैठे गप्पे मार रहे हैं, मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे, तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग में बेचारे का तुम किस हिसाब से कहे, मैंने कहा नहीं इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है, अगर इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डायलॉग साथ में मैंने कहा उसकी बाद उनकी आवाज इतनी अच्छी है, जब वो टॉकिंग डायलॉग हमें रोल मिल जाएगा मेरे ख्याल से विल डू वेरी वेल, तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका।
0: और मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वेदा जी हैं, और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है और उनकी माँ का किरदार भी अदा किया।
1: हाँ
0: बिल्कुल। कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको, वो जो शुरू में वो जो बात होती थी उस समय, बाद में तो सब कुछ बदल ही गया है पूरा, उन्होंने साबित भी कर दिखाया, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ?
1: मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव जो भी कहिए, उनके बच्चे जया सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है, और वो इतने ज्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दी तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा है उनका।
0: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
1: हाँ, रेशमा और शेरा में हम न्यू कवर थे, एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन मतलब अमिताभ की वालदा सेट पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बुला, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा, ओ मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रेटे की जरूरत नहीं, मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, फिर मैं वापस गई जहां आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी हैं आप सड़क पे, आप जरा बाहर ताजी हवा खाइए, फिर कहे तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो, मैंने कहा क्यों, तुम कसके मारने तो मैंने कहा देखिए अगर मैं एक कसके मारूं तो वो शॉट खत्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक फिर 6 तमाचे पड़ेंगे उसको तो हंसने लगी, बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ, फिर मैंने सुनील दत्त को कहा डायरेक्टर को देखिए अगर तमाचा पड़ने से पहले कोई गलत पोजिशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया कुछ भी हो तो पहले काट दीजिए, बेचारे को क्यों इतने तमाचे मारूं, पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कसके मारे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कसके
0: यहाँ हम रेशमा और शेरा जिसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है, ये कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा
1: का। रेशमा कैसा, एक मीठी सी चुबन, एक हाँ बहुत मीठा गाना, बहुत अच्छा है।
2: एक मीठी सी चुबन,

0: भैया जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, वे बियॉन्ड इट्स टाइम, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. कभी वो रोल देख के ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, जस्टिफिकेशन था. और एक था, दे वर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है. और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज हम अपने लिए करना चाहते हैं. तो रोजी का पैशन था डांस करना, वो उसको मार्को से नहीं मिलता, तो उसको एंकरेजमेंट राजू से मिलता है. फिर एक पॉइंट आता है जहां सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है, कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं, अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ. राजू कहते नहीं, अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है. ये कहती है नहीं, मुझे बच्चे चाहिए. अरे बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या. उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना. वो कहते हैं कहां से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की. सो हर एक मौके पे, कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है. अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती है, वो बन जाती है. फिर कहती है नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड. फिर उस वक्त राजू कहते नहीं, अभी कहां सेटल होंगे. तो ये चीज जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था. सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये करेक्टर अच्छा नहीं है, ए बैड पर्सन. नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड.
0: देव साहब के साथ में, और जो आपके दोस्त, क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ और. आपके मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में, कैसा है उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खास. उससे एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, तो एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं. कैसे थे वो?
1: जैसे मैंने कहा, वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके. तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए, तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा. मैंने कहा अच्छा ठीक है, कर लेंगे.
0: इतना हक,
1: हाँ हक जता रहे थे जैसे. तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती. जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो काफी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से. तो ही इज वेरी नाइस एज ए प्रोड्यूसर,
0: एनर्जी से भरे हुए.
1: बेहिसाब, मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ, क्योंकि वो कभी थके, कभी मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर ले, तो वो तो कभी नहीं कहते थे. वो उतने, जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया, ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़ भाग दौड़. फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे, तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताजी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए. फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे, वो कह रहे, मैं कहती देव आप हमेशा ऑल द टाइम यू फुल ऑफ एनर्जी, सो यू आई कॉल यू एवर रेडी बैटरी.
0: अभी भी उनके अंदर जैसे नौजवान होता है, और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं, बेशक वो सफलता मिले ना मिले, लेकिन वो कारवा नहीं रुका है, उनका जज्बा अभी भी वैसे ही है और फिल्में बनाए जा रहे हैं. तो अभी उनसे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
1: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है, हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं. मेरी जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है. सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो जौहर थे बेचारे, उनसे, उनकी फैमिली से, वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम नहीं किया. हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जुनूदे में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम.
2: दोस्तों, वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें. आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया, लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी। भूलिएगा।

अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम। हम आपको बता दें, वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की सदाबहार सुरीले कार्यक्रम FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, पेश खिदमत है कार्यक्रम ई फरमाइश।

आपके दिलों की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हिसार, आपका मोहब्बत इकरार आकाशवाणी हिसार, आपकी दिले अजीज आकाशवाणी हिसार और आपकी नजरे करम आकाशवाणी हिसार। आज आपकी नजरे इनायत कर रहा है कार्यक्रम ई फरमाइश।

आकाशवाणी हिसार की धड़कनों में आज आप दोस्तों के मोहब्बत के एहसास हैं। जी हाँ, आकाशवाणी हिसार की धड़कनों में आज आप दोस्तों के मोहब्बत के एहसास हैं। लगता आज कुछ यूं है कि आप सभी दोस्त हमारे बहुत पास पास हैं। कब शुरू हुआ ये एहसास मोहब्बत, कब शुरू हुआ ये एहसास मोहब्बत कुछ पता न चला। ख्याल बस इतना रहा दोस्तों कि आप आकाशवाणी हिसार की धड़कनों में समाए हैं एक पाक मोहब्बत बनकर।

आइए दोस्तों, आज आपकी और हमारी मोहब्बत की पाकिजगी को सरेआम करते हैं और आप सभी दोस्तों को आपकी दोस्त क्षमा सलामी मोहब्बत करती है।

दोस्तों, आपको बेसब्री से इंतजार है अपने मेल्स का और अपने नामों का। इंतजार है कि हम कब आपका नाम रेडियो से प्रसारित करें और आपकी पसंद का नगमा आपको सुनवाएं। तो कार्यक्रम का सिलसिला हम शुरू करते हैं। ये ईमेल हमें मिली है कंवर कॉलोनी बड़वाहा खरगोन एमपी से प्रवीण शिमाली और

मीना शिमाली की। आप हैं गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा। ये फरमाइश हमें भेजी है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवाया मल्होत्रा और सुज्जा सिंह ने। श्रोताओं, आपसे एक बात हम यहाँ कहना चाहेंगे कि जिस भी श्रोता ने हमें एक बार मेल भेज दी है वो दोबारा हमें मेल ना करें। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हमें ये मेल भेजी है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। और दोस्तों, आप हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हमें ये मेल भेजी है लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडहट्टी बुलंदशहर से हमें ये फरमाइश मिली है मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन सुहान और अरजान और अबान अब्बासी की। आप हैं वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हमें ये मेल मिली है राशिद हुसैन अंसारी की, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी की। एयरपोर्ट रोड वंदनगर इंदौर एमपी से हमें ये फरमाइश भेजी है मेल के जरिए नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे ने। गांव खोखारा वाले श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा। तो दोस्तों, आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म का नगमा। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, पसंद आपकी नजर।

आज का दिन मोहब्बत के नाम कर दिया हमने, आज का दिन मोहब्बत के नाम कर दिया हमने, आज के दिन मोहब्बत को सलाम कर दिया हमने। ये कौन सा रूहानी जुनून है जो खत्म नहीं होता, ये कैसा खुदाए एहसास करम है जो ताउम्रे जिसमें रूहे बन गया है।

दोस्तों मोहब्बत क्या चीज है आप बता सकते हैं? क्योंकि दोस्तों मोहब्बत कोई चीज नहीं है, मोहब्बत है एहसास, एक ऐसा एहसास जिसे दिल ही महसूस कर सकता है। अब देखिए ना, आपसे हम तहे दिल से बेहद बेशुमार बेमिसाल मोहब्बत करते हैं, इसी तरह आप भी हमसे बेमिसाल

मोहब्बत करते हैं और आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रमों से बेशुमार मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, ये तो एहसासों का मसला है जिसे हम एहसासों के जरिए ही समझ सकते हैं। अब देखें ना, आपके एहसास आकाशवाणी हिसार के साथ जुड़े हैं और हमारे एहसास आपके साथ जुड़े हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई फरमाइश अपनी दोस्त क्षमा के साथ FM 102.3 MHz पर। तो दोस्तों, आपके एहसास ये कह रहे हैं कि हम आपकी पसंद का कार्यक्रम का अगला नगमा आपकी नजर करें। तो आइए इसी बात पर कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपकी नजर करेंगे आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। ये मेल हमें मिले हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव के। गांव शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हमें ये मेल भेजी है मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा और लीलाधर शर्मा ने। कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर इंद्राबाई खोबरखेड़े, छकुली ताई खोबरखेड़े और खांडवी बुल्ढाना से दीपाली राम थाडे और स्वराज राम थाडे। छोटी बलिया सिटी मुंबई से है अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदक आरजू, जूहू इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कपासहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिय मत्सा, आशु अहमद फूलवाले और इनका समस्त फूलवाले परिवार। मनाली हिमाचल से हमें ये मेल भेजिए हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई और चंडीगढ़ से है शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। पियरा बाजार झुमरी तलैया गिरडीह से है अभय कुमार सनातनी, गुड्डू कुमार, शिवानी कुमारी, प्रियंका मुन्नी देवी, जयप्रकाश, रिया, जिया, टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, बीके सिन्हा, बांके बिहारी बाबू मोसाई और बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता, नन्नी मुन्ने, अन्विका बेबी, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से हमें ये मेल भेजिए स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुनूर, गुरलाल और अविराज सिंह ने। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से हमारे श्रोता हैं बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार और इनके सभी साथी। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से है मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और आफरीन कौसर। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हमें ये मेल मिली है विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश कड़वासरा और जुद्धव कड़वासरा और इनके साथ हैं हनुमान सहारण। गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतोर, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार। तो आइए दोस्तों, आप सबकी पसंद पर सुनते हैं कांटे फिल्म का ये नगमा। तो दोस्तों, आपकी पसंद आपकी नजर।

इश्क के समंदर में तूने इस कदर डुबाया हमको, इश्क के समंदर में तूने इस कदर डुबोया हमको कि हम देखते देखते ही किनारा हो गए। पर दुआएं इश्क में इतना असर था हमारी कि समंदरे अंतस का हम मोती बन गए।

दोस्त, वो इश्क का जो समंदर है वो इतना गहरा होता है कि हम उसे ना दिखा पाते हैं ना बता पाते हैं, बस एहसासों के जरिए महसूस कर सकते हैं। अब देखिए ना, आपके दिल में जो आकाशवाणी हिसार के लिए मोहब्बत है, क्या आप हमें बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? शब्दों से कुछ चीजें दोस्तों होती है जो बयां हम कर नहीं सकते। अल्फाज हमारे कम पड़ जाते हैं लेकिन एहसास हमारे हमेशा हमेशा वैसे ही रहते हैं। अब बेशुमार मोहब्बत जो हमने आपसे की है वो तो हमारे एहसास ही आपको बता पाएंगे और एहसासों को आप एहसासों के जरिए समझ सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं ई फरमाइश कार्यक्रम FM 102.3 MHz पर अपनी दोस्त क्षमा के साथ। तो दोस्तों, एहसासों की बात करते हैं और एक नया आगाज भी करते हैं, यानी कि कार्यक्रम का अगला नगमा आपकी नजर करते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारी मेल दोस्तों मिल रही है और एक खास बात फिर से हम यहाँ आपसे कहेंगे कि जिस श्रोता ने हमें एक बार मेल भेज दी है वो दोबारा हमें मेल ना करें, क्योंकि दोस्तों हमारे बहुत से श्रोता हैं जो चूक जाते हैं, जिनका नाम हम नहीं ले पाते हैं और दोबारा हमसे नाम रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इसलिए दोस्तों, आप हमारी इस गुजारिश को दिल से स्वीकार करें और माने। तो आइए अब हम अगली मेल के बारे में आपको बताते हैं। भटिंडा रोड मंडी डबवाले से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। आप हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और इनका पूरा परिवार। आपने हमें मेल भेजी है ओगाला जिला अंबाला हरियाणा से। नागचंद रोड संजय कॉलोनी खंडवा से है अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नजीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से है सोन जोशी और पायल जोशी। रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हमें ये मेल भेजी है तुलसी मस्किन, वीना मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना और रिधान खुराना। नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता, शोभा, नंदिनी, आराध्या वैष्णवी, खड़से कुमारी और वंदना मराठा देवी। श्रोताओं, एक बात और हम यहाँ आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपने नाम के आगे कोमा जरूर लगाएं ताकि हमें पता चले कि ये नाम खत्म हो चुका है, क्योंकि आप एक लाइन में लिख रहे हैं इससे पढ़ने में हमें दिक्कत होती है। शोभापुर गांव मेरठ से हमें ये है दिग्दर्शन और कविता ने हमें ये मेल भेजी है। जिला मुरादाबाद दुल्हापुर यूपी से हमें मेल भेज रहे हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और इनके सभी साथी। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजी जाधव, डॉक्टर प्रशांत, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वद देशमुख, प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख।

जलालाबाद वेस्ट से है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहोजा। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक और सचिन शर्मा। विट्ठूल तहसील उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमें ईमेल मिली है गंगाधर पोपलवाड, प्रियंका और सम्यक और स्वरीत। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। मुंबई से है अन्नू भटजात्या, शमशुल खान और अनुराग बेनारा।

पांढरकवाड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से हैं। अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री, धनश्री और इनका समस्त बुरांडे परिवार। आइए दोस्तों, आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म ताल फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा।

इस कदर टूट कर बेइंतहा मोहब्बत की हमने उनसे, इस कदर टूट कर बेइंतहा मोहब्बत की हमने उनसे कि ना हमें डूबने का डर था ना उन्हें खोने का गम। इश्क महल का वो शाहजहां है हमारा, फिर भला मुमताज हम किसी और को कैसे बनने देते।

इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना। क्या दोस्तों, आप मानते हैं कि जीवन में इश्क होना चाहिए? भाई हम तो मानते हैं कि जीवन में इश्क जरूर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी इश्क मीठा मीठा एहसास देता है तो कभी खट्टा खट्टा एहसास भी देता है, लेकिन जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना देता है इश्क। अब देखिए ना, इश्क के बिना जिया जाए ना, और ये तो वो एहसास समंदर है जो हमें अपने आप में पूरी तरह डुबो लेता है। अब देखिए ना, आप पूरी तरह आकाशवाणी हिसार के साथ हैं, आप एहसासों से आकाशवाणी हिसार के साथ जुड़े हुए हैं, और हम भी आपके साथ बेशुमार बेमतहा मोहब्बत यानी इश्क करते हैं। अब दोस्तों, ये इश्क दास्ता ही है जो हमें एक दूसरे से बांधे है, जोड़े है, तभी तो हम एक दूसरे का बेसब्री से इंतजार करते हैं। फिलहाल दोस्तों, आप भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आपकी पसंद का नगमा लेकर बहुत जल्द हाजिर होते हैं छोटे से अंतराल के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए कार्यक्रम ई फरमाइश के साथ और अपनी दोस्त क्षमा के साथ FM 102.3 MHz पर।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

दोस्तों, कार्यक्रम ई फरमाइश में आपकी दोस्त आपका पुनः स्वागत करती है। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का अगला नगमा। चमन पार्क दिल्ली से हमें ये मेल मिली है डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीपा की। वीरम गांव से अजीता पोल और हेमा पोल, शोभापुर बाई पास से मेरठ से उमेश गौड़ और उमरखेड़ से गंगाधर पोपड़वाल। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से है संतोष खड़ से और विनोद खड़ से। आप हैं हमारे साथ मोहम्मद उस्मान अंसारी। आपने कहां से हमें मेल भेजी है यह आपने लिखा नहीं है। अपने स्थान का नाम आप अवश्य लिखें।

रिंग ने छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप हैं संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर और कमल साहनी और पिंगवाला चौक जालंधर से आपने हमें ईमेल भेजी है। दंतरेगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ से है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नौखेलाल वर्मा। आप हैं बुलढाणा

कुमार। ग्राम पेपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। गुजरात गांधीग्राम से है प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। गांधीनगर गुजरात से हमें ये मेल मिली है सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा की। ग्राम दुलापुर।

पाकुड़ झारखंड से हमें मेल मिली है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसुतासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोहड़ा गाजी पश्चिम बंगाल से है मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। साधु शहर जिला श्रीगंगानगर से हमारे ये नियमित श्रोता है राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हमारे श्रोता है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौल, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। संघ मित्रा श्रोता संघ पोफाली जिला यवतमाल से है जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता। गंज डुंडवारा यूपी से हमें हमारी ये श्रोता है मास्टर गिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और सहारनपुर यूपी से है राधा नामदेव। कुम्हार गली श्री रामपुर से हैं अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, पुनावले पुणे से अजय सोनवने और करिश्मा सोनवने।

और श्रोताओं, अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से है रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर मैं प्रेम की दीवानी हूं फिल्म से ये बहुत ही प्यारा नगमा।

प्रेम मेरी आहों में, प्रेम मेरी निगाहों में, प्रेम मेरी सांसों में, प्रेम मेरे एहसासों में, प्रेम मेरी ख्वाहिशों में, प्रेम मेरे ख्वाबों में, प्रेम मेरी तमन्नाओं में, प्रेम मेरे जज्बातों में, ये तो प्रेम ही है जो मुझको बांधे है मेरे जाने जाना से। तभी तो मैं कहती हूँ, हाँ मैं प्रेम की दीवानी हूँ।

दोस्तों, प्रेम अपने होठों पर, अपनी निगाहों में, अपनी ख्वाहिशों में, अपनी तमन्नाओं में, अपने ख्वाबों में और अपने जज्बातों में हमेशा प्रेम को बसा के रखे। देखे, प्रेम होगा जिंदगी में तो एहसासों में बहुत बहुत खुशी अपने आसपास आपको महसूस होगी। अब देखिए ना, एहसासों में अगर प्रेम नहीं है तो जिंदगी नीरस हो जाती है, अगर एहसासों में प्रेम है तो जिंदगी बहारे बरखा बहार बन जाती है। अब देखिए ना, आपकी जिंदगी में बरखा बहार है आकाशवाणी हिसार, और हमारी जिंदगी में आपके श्रोताओं की जो मेल है वो बरखा बहार बन जाती है। अब देखिए ना, इसलिए दोस्तों, प्रेम का होना जीवन में लाजमी है और जरूरी भी है। तो आइए इसी बात पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम नगमा। इसके लिए हमें मेल भेजिए गुवाहाटी असम से हरिन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या ने। चौधरीवास से हमारे श्रोता है राजू अग्रवाल, केशव चरणदास, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हमें मेल भेजी है बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा ने। आप श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगी सपुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमल निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीम पलक, लुबना और यश मंसूरी।

नई बस्तीगंज डुंडवारा से है मोहम्मद यासीन हाशमी। श्रोताओं, आपको हमने पहले भी बोला था कि आप हमें दोबारा मेल ना करें, लेकिन आप भेज रहे हैं। कलानूर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। जीवरा हिसार से हमें ये मेल मिले हैं वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर और मनोज भ्याण के। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम अब्बासी, यशव अब्बासी और रसीद वारसी।

मोताला महाराष्ट्र से है विजय सुलरकर, रतनमाला और ओम सुलरकर। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी हिमाक्ष। कुमार हेड़ा सहारनपुर से है सैयद मसरूर, शाहिना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम,

उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमें ईमेल मिले मुकेश गोस्वामी, बदूप गोस्वामी, आशी, शिवन्या और अन्नू गोस्वामी। आइए दोस्तों आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये नगमा।

हर लम्हा मेरी नजर तुझको जी भर कर जी कर देखती है। तुम कहते हो मुझसे, मैं तो दूर हूँ तुमसे, फिर भला कैसे देखते हो। जवाबे रुख हम इस तरह बयां करते हैं मुस्कुराकर कि हम रूहे ऐसा से हद की दीवानगी से देखते हैं।

दोस्तों, आप हमें इस कदर समाए हैं कि हम जहां भी होंगे आप हमारे हमेशा साथ होंगे, क्योंकि दोस्तों एहसासों के जरिए जो रिश्ता जुड़ता है वो हमेशा हमेशा के लिए साथ चलता है। आज अपने एहसासों के साथ, आपकी मोहब्बत के साथ आपकी दोस्त आपसे इस कार्यक्रम से विदा चाहेगी, लेकिन एक नए अंदाज के साथ, एक नए कशिश के साथ, एक नई उमंग के साथ आपके लिए फिर लौटेगी एक नए कार्यक्रम के साथ। तो आज अपनी दोस्त क्षमा को कार्यक्रम ई फरमाइश से इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ई फरमाइश FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ लम्हों बाद शाम के 6 बजे जाते हैं। अब हिंदी समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं। इंतजार के हल्के से पल हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अवैध और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमरीकी एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये जी श्रोताओं, पेश खिदमत है कार्यक्रम रूपरेखा। आपकी खिदमत में हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मिला जुला खुलासा।

श्रोतों, पहले हल्की नजर हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही देर बाद शाम 6:10 पर प्रादेशिक समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र लिए चलेंगे। प्रभु वंदना का कार्यक्रम सुनेगा भक्ति संगीत आज शाम 6:20 पर। और श्रोताओं, आज शाम 6:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे उमंग।

श्रोताओं, आज शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम आपके लिए पेश होगा। 7:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम हमारे गांव। रात्रि 8 बजे आपके लिए पेश होगा कार्यक्रम लोकमंच और रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों के झरोके से। रात्रि 10 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे।

आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:55 पर। कल सुबह 6 बजे हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल प्रातः 6:05 पर कार्यक्रम वंदन मार्ग आप सुनेंगे विविध भारती से। 7:10 पर लोकरंग कार्यक्रम हमारे केंद्र से पेश होगा। 7:40 पर कार्यक्रम सुनेगा सुप्रभात। और कल सुबह 10 बजे कार्यक्रम होगा नमस्ते हिसार।

श्रोताओं, कल शाम 5 बजे आप हमारे केंद्र से सुनेंगे ओल्ड एज गोल्ड कार्यक्रम। 6:20 पर कार्यक्रम होगा भक्ति संगीत। 6:30 पर एनसीईआरटी द्वारा कार्यक्रम आप सुनेंगे उमंग खेती किसाना सेते। ये कार्यक्रम कल आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से 7 बजे। और 7:30 पर कार्यक्रम होगा महारे गांव।

श्रोताओं, कल रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे हमारे केंद्र से फिल्म संगीत, और रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मिला जुला खुलासा। ये आकाशवाणी हिसार है। कुछ लम्बों बाद शाम के 6:10 हुआ चाहते हैं। अब प्रादेशिक समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र ले चलते हैं। प्रतीक्षा के हल्के से पल हमारे साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकेर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा विधानसभा की मेजबानी में चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में 40 वक्ताओं ने सर्वसम्मति से 4 प्रस्ताव पारित किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जागृत ग्राम पुरस्कारों के तहत 6 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विभिन्न योजनाओं की कुल 2600 करोड़ रुपए की राशि जारी की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 जिलों में 350 अटल पुस्तकालयों का लोकार्पण किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा की मेजबानी में चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन के जोन 2 सम्मेलन के आज दूसरे दिन प्रथम एवं द्वितीय सत्र में भविष्य की चुनौतियों से निपटने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जागरूक समाज एवं विधायकों की भूमिका विषय पर मंथन किया गया। तीसरे सत्र के उपरांत मीडिया के साथ वार्ता करते हुए राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने बताया कि सम्मेलन में अलग अलग राजनीतिक दलों और अलग अलग विचारधारा के 40 वक्ताओं ने मिलकर संवाद किया और सर्वसम्मति से 4 प्रस्ताव पारित किए।
1: कार्यक्रम और जन जागरूकता पहल के माध्यम से विधेयक निर्माताओं और नागरिकों के बीच निकटता सुदृढ़ करना। संकल्प 2, निरंतर प्रोफेशनल प्रशिक्षण, बेहतरीन संव्यवहारों के आदान प्रदान, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और बेहतर अनुसंधान सपोर्ट के माध्यम से विधेयक निर्माताओं की क्षमता को सुदृढ़ करना। सम्मेलन ने माना कि प्रभावी शासन के लिए जानकार और सक्षम विधि निर्माता आवश्यक है। संकल्प 3, विधायी निगरानी को सुदृढ़ करना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बढ़ाना और नीति बनाने व उसे लागू करने में नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
0: उन्होंने कहा कि पहले प्रस्ताव का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना और तकनीक का जिम्मेदारी से उपयोग करना है, ताकि एक ऐसा समाज निर्मित हो जो जानकार, जागरूक और सशक्त हो तथा विकसित भारत 2047 के विजन को प्रभावी योगदान दे सके। अंतिम और छठे संकल्प को लेकर उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और सुलभता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों, AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डाटा आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना है। हरियाणा लोकसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने बताया कि आज लगभग 5.5 घंटे तक चर्चा हुई है।
1: लगभग 5.5 घंटे तक आज चर्चा हुई है और उसमें लगभग 40 सदस्यों ने, पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों ने इसके अंदर अपना विषय रखा है और 4 प्रस्ताव पास भी हुए हैं। और साथ ही इसके बाद अभी वैलिडिक्ट्री सेशन होगा, जिसमें हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष उसके अंदर हिस्सा लेंगे, साथ में माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय उपसभापति राज्यसभा उसके अंदर मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। और उससे पहले सभी माननीय सदस्यगणों के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक छोटा सेशन रखा गया है कि किस प्रकार से हमें भविष्य में टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर आगे बढ़ना है और किस प्रकार से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता को बढ़ाने में हमें इस्तेमाल करना है।
0: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जागृत ग्राम पुरस्कारों के तहत प्रदेश की 6 ग्राम पंचायतों को विकास, स्वच्छता और सुशासन के नए मानदंड स्थापित करने के लिए सम्मानित किया। उन्हें 1,66,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत की असली शक्ति हमेशा गांवों और पंचायतों में है।
2: आज 17 जिलों में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी 350 अटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया है। और साथियों, जो पिछले दिनों मैंने घोषणा किया था कि मुख्यमंत्री जागृति ग्राम पुरस्कार के माध्यम से 6 ग्राम पंचायतों को आज यहां सम्मानित भी किया गया है, जिन्होंने जो हमने 5 पैरामीटर्स बनाए हैं, उन पैरामीटर्स को, उन मानदंड को स्थापित किया है और इसकी एवज में आज 1,66,00,000 रुपए के पुरस्कार की राशि इन पंचायतों को देने का काम किया है।
0: इन पंचायतों में फतेहाबाद जिला के गांव जांडली कलां की ग्राम पंचायत को 51 लाख रुपए, चरखी दादरी के गांव झिंझर की पंचायत को 31 लाख रुपए, अंबाला के साहा की पंचायत को 21 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी में फतेहाबाद जिला के गांव जल्लोपुर की पंचायत को 31 लाख रुपए, गांव गतली को 21 लाख रुपए तथा करनाल के मरदान हेड़ी गांव की ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। उन्होंने इस दौरान कुरुक्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर आधारित धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज विभिन्न योजनाओं की कुल 2697 करोड़ रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की माता बहनों को 8वीं किस्त की 207 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।
2: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हमने 8वीं किस्त जारी की है, जिसके माध्यम से आज महिलाओं के खाते में 207 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि पहुंचाने का काम किया है। चाहे हमारे बुजुर्गों की ये सामाजिक पेंशन की बात है या विडो पेंशन है, ऐसी सब पेंशनों को मिलाकर के आज 1,151 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि उनके खाते में पहुँचाने का काम किया है।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना के तहत भी पीड़ित परिवारों को 169 करोड़ 50 लाख रुपए की वित्तीय मदद जारी की गई है।
2: दयालु योजना के तहत अगर किसी परिवार के ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूट जाता है तो सरकार उसका सहयोग करती है। हमने दयालु योजना के तहत आज 4,538 परिवारों को 169 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि जारी की है और ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिए 1,056 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि खाते में डालने का काम किया है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिनका सीधा लाभ देश की जनता को मिला है। उन्होंने सिलसिलेवार योजनाओं के हिसाब से आंकड़े प्रस्तुत किए। केंद्रीय मंत्री रोहतक के वैश्य कॉलेज सभागार में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंभव को संभव बनाने का काम किया है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा कि गत 12 वर्ष के दौरान भारत ने स्थिरता और परिवर्तन दो शक्तियों का प्रमाण देखा है।
3: आज भारत में दो शक्तियों का एक प्रमाण पिछले 12 वर्षों में हमने देखा है, एक स्थिरता और दूसरा परिवर्तन। प्रधानमंत्री जी भारत वर्ष के सबसे लंबे प्रजातंत्र प्रणाली से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं, तो अभूतपूर्व स्थिरता और उसी के साथ भारत के घरेलू उत्पादन की दर 7.7% तक पहुंचकर पिछले 12 वर्षों में इसका एवरेज 7% के करीब आ चुका है, जिसके आधार पर अभूतपूर्व परिवर्तन भी हुआ।
0: उन्होंने रोहतक में 4 वर्ष पहले करीब 315 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निरीक्षण भी किया और स्वच्छता अभियान में भी शिरकत की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि शामलात भूमि पर पिछले 20 वर्षों से मकान बनाकर रह रहे ग्रामीण परिवार मालिकाना हक लेने के लिए अगले वर्ष 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे परिवारों से वर्ष 2004 की कलेक्टर दर की 1.5 गुना के अनुसार भूमि खरीद की राशि जमा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दस्तावेजी कठिनाइयों के कारण कई पात्र लोग आवेदन नहीं कर सके थे, ऐसे में सरकार ने उन्हें राहत दी है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्र में कचरा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली चालक और कचरा संग्रहण कर्मी उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक होंगे। इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाओं पर भी सरकार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने 17 जिलों के 179 गांव की फिरनियों पर LED स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन भी किया, जिन पर 23 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत आई है। साथ ही 17 जिलों में 44 करोड़ रुपए की लागत से बने 350 अटल पुस्तकालयों का भी लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों हेतु 1056 करोड़ 75 लाख रुपए सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किए। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा विधानसभा की मेजबानी में चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन संपन्न हुआ। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
4: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं, प्रभु वंदना का कार्यक्रम सुनी भक्ति संगीत।

श्रोताओं, भक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत। एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम, एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
1: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
1: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं
1: जी। सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्द

0: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वा।
1: वा यानी?
0: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
0: दूसरा शब्द है केई।
1: जी।
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो अजीत जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमा

0: पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मुदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते। और हाय
4: हर गोविंद भाई, हाँ तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।

0: पास। कहिए क्या संवाद है?
1: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
0: बड़ी बहू या

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हाले गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
0: अच्छा।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो।

0: हर गोविंद काका आए हैं।
1: पाए लागू माँ जी।
2: जीते रहो हर गोविंद बेटा, क्या समाचार है?
1: जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
2: मेरी बेटी का कोई संवाद?
1: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हाँ? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
2: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
1: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
2: सो तो है।
1: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
2: अरे हर गोविंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली। बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
2: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
1: अच्छा अच्छा माँ जी।
2: अरे हर गोविंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
3: हर गोविंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोविंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हर गोविंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
1: माँ जी अब आज्ञा दीजिए।
2: अरे
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पाए लागू।
2: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
4: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
1: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
4: अच्छा
1: अच्छा, राम राम।
4: राम राम
1: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो।

जाना है जलालगढ़, टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। हाँ? अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: राजेंद्र भाई राम राम।
1: अंजू बाण आपने भी राम राम, और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने भी
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: राजेंद्र भाई कार्यक्रम किसान वाणी के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, और आज किसान वाणी के अंतर्गत आप बात करेंगे स्वास्थ्य की।
1: जी
0: स्वास्थ्य मिट्टी का जिस प्रकार ते आपा ने अगर नू लग गए कि कुछ गड़बड़ है तो आप डॉक्टर दूर जावा,
1: बिल्कुल
0: उसी प्रकार से अपनी जो मिट्टी है, जमीन है, खेत की मिट्टी, जो उपजाऊ है चाहे कम उपजाऊ है, हर प्रकार की मिट्टी ने समय समय पर जांच की जरूरत पड़े है। देखो अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप लगभग हर रोज या दूसरे तीसरे दिन किसान भाइयों ने मिट्टी पानी की जांच के बारे में बता दे रहा हूँ कि आपने मिट्टी पानी की जांच क्यों करवानी चाहिए, और फिर जब उस मिट्टी पानी की जांच करवाने के बाद भाई जो रिकॉर्ड रखे वो किस प्रकार से रखना चाहिए, और उस रिकॉर्ड का के महत्व है, और सरकार की तरफ से किस किस प्रकार की सुविधाएं उस रिकॉर्ड के ऊपर किसान भाइयों ने उपलब्ध कराई जाए, इन सब बातों के बारे में आज आप चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल। देखो अंजुबान, बात यह है कि भाई हम तो जो है ना रेडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों तय यूं कहते आए हैं शुरू से ही कि फसल आप चाहे कोई भी ले रहे हो, चाहे सब्जी की है, चाहे बागवानी की है, या फिर चाहे आप परंपरागत खेती कर रहे हैं,
0: जी
1: लेकिन माटी पानी की जांच बहुत जरूरी है। कई बार सवाल ये उठे कि भैया जी उससे क्या फर्क पड़े है, लेकिन फर्क यो पड़े जिस तरह आपने कहा ना अंजुबान के भाई शरीर में बीमारी कि में है और दवाई आप कौन सी दे दें तो, और शरीर डिमांड किस चीज की कर रहे हैं, आप उसने खुआ दें कि में
0: जी,
1: तो मतलब वो फायदा करने की बजाय वो नुकसान हो जाए। तो इसलिए किसान भाई ने कहें कि भी माटी की भी तासीर उस तरह है, क्योंकि आप मान लिया किसी भाई के पास जो है 10 एकड़ जमीन है, तो जरूरी नहीं है कि उसके 10 के 10 एकड़ जमीन की जो है वो माटी एक जैसी हो, तासीर एक जैसी हो।
0: जी
1: तो आप जो है ना उसकी जाँच करा लेंगे तो आपने न्यू बेरा पट जाएगा कि भाई इस माटी में कौन सी फसल उसके है, और जो है ना खाद पानी भी फिर आप उसी हिसाब से देश को हो, और किस्मों का चुनाव भी जो है ना उस माटी की जांच के हिसाब से आप कर सके हैं, फिर आपने सही पता लग जाए कौन सी फसल आपने इसमें फायदा देने वाली है।
0: जी किस्मों का भी और फसल का भी, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारी फसल, देख हर प्रकार की फसल के लिए भाई अलग अलग प्रकार की मिट्टी की जरूरत पड़े है।
1: जी
0: तो कई बार नहीं हो जाए कि दो किसान भाई हैं, ड्योड़ा का ड्योड़ा लग गया उनका खेत का, लेकिन फिर भी एक भाई का अच्छी फसल हो जाए, दूसरा भाई नू कह मेरे तो इतनी पैदावार को नहीं हुई, ओड़े तो कट्ठा बीज लिया।

0: जब भी आप अपने खेत पर कोई नया प्रयोग करें जब, तो बहुत ही जरूरी हो जाए कि आप अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। और मिट्टी में भी जितनी भी एकड़ है आपके पास, हर किले की जमीन भी अलग अलग हो है,
1: बिल्कुल
0: तो जब भी आप न्यू सोचो कि चलो पारंपरिक फसलें बहुत होगी, बहुत साल से कर रहे हैं, कुछ नया बदलाव करना चाहिए, या सब्जियों की खेती की तरफ कोई किसान भाई जा रहा है, या आपने कहा कि बागवानी कर रहा है, या कोई बाग लगा रखा है उसने भाई ने, ये सारे फल एक एरिया की जब आप बात करें, कोई किसी एरिया में है, कोई किसी एरिया में है, तो वो मिट्टी का ही सारा खेल है। मिट्टी अगर आपकी इस मजबूत होगी, स्वस्थ होगी, उपजाऊ होगी, जिदे आप जो है अपनी आमदनी बढ़ा सके हैं।
1: बिल्कुल देखो अंजुबान, इसमें कोई शक नहीं है कि माटी की जो तासीर बदलने की बात आप कर रहे हैं ना, इसलिए किसान भाइयों ने कहें कि भाई आप हर एक किले की माटी जो है उसकी जांच करा कर उस पर जो है ना उसका नमूना लगा के उसकी पहचान कर लें कि फलाने किले की माटी है, इसमें इसने इस चीज़ की जरूरत है।
0: जी
1: क्योंकि देखो देखा ये गया है कि किले किले पर जो है ना माटी की बदल जाए। कई बार देखा गया है कि देखो अंजुबान, मान लो किसी भाई ने किले की माटी उठवा दी, नीचा करना है ऊंचा है, तो कई बार कई किले तो ऐसे हैं जरा 1 फुट माटी उठ गई तो नीचे सफेद कहाँ करा जाए, तो उस जमीन की तासीर अलग है, उसमें खाद पानी अपना अलग तरीके से देना है। और एक किला आपका ऐसा भी है चाहे उसने 5 फुट खोद ले उसमें ना जो है वो सफेद कहाँ करनी है या उसमें बीच में काली माटी नहीं आती, तो
0: जी
1: इसलिए कहते रहे भी देखो जांच आप जरूर करावें, उसके हिसाब से भी जो ना अपने किस्म और फसल और बहुत सारी चीजें जो है इस पर डिपेंड करें। यूं ही जब पानी की बात करें तो पानी भी देखो अंजुबान बात यह है कि कई फसल जो है ना वो ट्यूबवेल के पानी ने नहीं मानती या नीचे के पानी ने नहीं मानती, उसका पीएच मान के हिसाब से अगर बात करें, क्योंकि खासकर हिसार भिवानी एरिया की बात करें तो जहाँ पे थोड़ा सा पानी नीचे का कम है या मतलब मीठा पानी नहीं है, तो देखा ये गया है कि थोड़ा सा चरचरा जो पानी है, ये जिस तरह सरसों की फसल है तो वो उसने बहुत ज्यादा माना है,
0: जी
1: बल्कि यूं कहें कि जो नहर का पानी है मीठा पानी है उससे भी ज्यादा वो उसने मानना है। तो जब भी हमने बेड़ा पाटा है अभी पानी की भी जांच करानी जरूरी है। और थोड़ा सा जांच का आप ये भी देख लें, कई बार ये हो जाए ना अंजुबान के हमने भाई ट्यूबवेल का पानी की जांच करवानी है, हमने ट्यूबवेल चलाया और उसमें बोतल भर ले, इस तरह ना करें आप, उसने कम से कम जो है ना
0: जी
1: ट्यूबवेल
0: दो
1: ने
0: दो
1: दो
0: घंटे
1: दो घंटे
0: दो
1: तो
0: तीन
1: कम से
0: घंटे
1: कम
0: चालन
1: चलावें,
0: दें उसे।
1: हाँ चालन दे, फिर जो है उस पानी का अपने बेड़ा पाटेगा।
0: और इसी प्रकार से जब मिट्टी का सैंपल नमूना किसान भाई ले तो उसका भी एक तरीका है। आप थोड़ी सी अगर जानकारी की कोशिश करेंगे तो जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जो मृदा विभाग है उसमें मिट्टी पानी की दोनों की जांच हुआ है, और जो सही जो वैज्ञानिक तरीका है किस प्रकार का नमूना आपने लेना है, सैंपल लेना है, चाहे वो मिट्टी का है चाहे वो पानी का है, तो वो बताएंगे आपने उसी तरीके से। आप किले के बीच में तो लेना है कितनी गहराई मत लेना है, कितना खोद की माटी लेनी है, तो वो उसी तरीके से आप उसका सैंपल लेके आवे। और इसमें राजेंद्र भाई कोई घनी बड़ी सी लागत को नहीं आंदी किसान भाई की, लगभग मतलब जो मिट्टी की जांच है उसके नाम मात्र से पीछे लागे हैं।
1: देखो अंजुबान, इसमें लागत भी कि मैं नहीं, अगर हम मेले की बात करें, मेले के दौरान अगर आप माटी लेके आओ तो वो मात्र 10 रुपया की जांच है, या फिर ओड आवर्स में अगर आप आओ कहीं बाद में आओ तो 50 रुपये से ऊपर का आपका खर्चा नहीं है।
0: जी
1: और जो नमूने की बात आप कर रहे थे तो किसान भाई ने कहेंगे कि भाई नमूना अगर आपने किले का करवाना है तो एक जगह तो माटी ना लें, एक तो चारों कोने की माटी ले लें, उसमें ना थोड़ा वी शेप में खोद लें, थोड़ा सा 15-20 सेंटीमीटर यानी आधा फुट तभी थोड़ा सा फालतू कर लें, ऊपर की माटी हटा दें और इस चीज का ध्यान कर लें कि भाई चारों कोने की माटी एक बीच में थे,
0: जी
1: वो पांचों जो सैंपल हैं फिर उसने मिला लें और मिला के उसमें तो जो है ना थोड़ा सा एक नमूना काट लें आपका किसी लिफाफे में गाल लें और उस पर निशानदेही जरूर कर लें कि भाई फलाने किले की माटी, आप अपने हिसाब से नंबर ला लें, मान लिया आपने कोई 1 नंबर किला लिख दिया, किसी पे 2 लिख दिया, ताकि आपको रिकॉर्ड में चढ़े रहे
0: वो
1: और
0: आपकी जानकारी के लिए
1: जानकारी के लिए।
0: रहेगा आपके पास।
1: बिल्कुल, अरे इस चीज का भी एक विशेष तौर पर ध्यान रख लें कि भाई थोड़ा सा ना ऊपर तक माटी हटा दें, जित घास घूस खड़ा हो ना उसने साफ करके, कोशिश तो यह करें कि जरा बिल्कुल साफ माटी ओढ़े ते नमूना लें। और जिस तरह कई बार के हो अंजुबान के मान लें कि जमीन नीची है जित पानी ज्यादा खड़ा रहे है चमासे में खड़ा रहे है या किसी भी फसल में, उड़ते भी नमूना ना लें, मतलब समतल जगह हो उड़ते नमूना ना लें। और जड़े कई बार ये हो ना देखो अंजुबान, मान ले नरमा की फसल है तो वो बाड़ी के हम वो काट की जो है ना वो इकट्ठे कर दें जलाने खातर, तो इस जगह की भी कोई जगह हो जड़े खरपतवार आपने इकट्ठा कराया हो या जड़े खाद ज्यादा लगी हो, उड़ते भी नमूना लें, नमूना ना लेवें। कहने का मतलब ये हो कि जित आपने समतल जगह दिखे है जड़े कोई झाड़ झंखाड़ ना खड़े हो, जड़े खरपतवार इकट्ठे ना हो, पानी इकट्ठा ना हो, उन जगह ने छोड़ के फिर नमूना ले, फिर आपने पूरा अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
0: जी तो मिट्टी पानी की जांच का महत्व तो अपन राजेंद्र भाई बता लिया, थोड़ी सी बातचीत और करेंगे कि इसने जो है सही तरीके से आप रिकॉर्ड में किस प्रकार तक रख सके हैं, और क्या क्या सरकार इसके लिए आपको सुविधाएं दे रही हैं, क्या

0: क्या विशेष लाभ आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, इस बारे में भी बातचीत करांगे। लेकिन एक बार मनोरंजन करवाओगे सारे बाण भाइया का, तो सुनेंगे यार अग्नि।
1: ए तू मरती कद्यो मरता

बातों की मेरे दोरे काट नहीं, जो सोच समझ के बात करे वो कदे बारा।

रोवे से तू ये भेस कवारे ने बाबुल के घरी ये उम्र बता दी पड़ी रही सब।

एक ना लागी सोट तेरे भी इतना दुख हो से दू तेरा गण घोट ये पीठ फेर के करे ये सारे ये करे घूंघट की ओट बिन समझे बेकूफ बतावे।

0: राजेंद्र भाई, या तो भैया ने सुनी रागनी, और आपा बात कर रहे थे कि मिट्टी की जांच का क्या महत्व है। देखो, हर प्रकार की फसल हर जगह नहीं होती, हर प्रकार की फसल हर राज्य में नहीं होती।
1: जी
0: चाहे कोई फल है, चाहे कोई सब्जी है, चाहे कोई नकदी फसल है, इसके लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की जरूरत पड़े है। और वो जरूरत इसलिए पड़े है क्योंकि एक फसल में किस प्रकार की मिट्टी में किन किन से पोषक तत्वों की जरूरत है, तो यह क्यूकर पेरा पटेगा। आपने जुकर आप डॉक्टर का जावा है, डॉक्टर ने कह दे है कि आप में कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी। आजकल तो बड़ी कॉमन सी बात है राजेंद्र भैया,
1: जी
0: क्योंकि हमारा जो खान पान है वो कुछ इस प्रकार का हो गया, और अपनी जो जीवन शैली है इसके बारे में भी बातचीत करांगे कि किस प्रकार की हो गई है। लेकिन ये जो अपना जो विषय है वो है कि सोयल हेल्थ कार्ड, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड। और सरकार की जो आप बात करें सरकारी योजनाओं की, तो उसमें भी एक ये योजना है, स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। और इसके अंतर्गत जैसे कि किसान भैया ने अपन बात करी कि क्योंकि आपने मिट्टी की जांच करानी है, और उसका रिकॉर्ड जो कर, एक बालक का जो कार्ड नहीं, वो है टीका कार्ड, टीकाकरण का
1: हाँ
0: जो कार्ड हो
1: बिल्कुल,
0: है
1: हाँ उसमें
0: उसमें न्यू लिख दे हैं वो, इतने महीना पाछे यू टीका लगेगा, इतने पाछे यू टीका लगेगा, और उसको जो सो टीका लगता जाओ उसका टिक करता जाओ डॉक्टर
1: हाँ भाई ये काम
0: कि
1: हो लिए।
0: हाँ इतनी उम्र का बच्चा है, यू तो लाग लिया, अरे यू लगेगा। तो इसी प्रकार से जब जब भी आप मिट्टी की जांच करवाओगे, तो वो एक कार्ड है मिट्टी की जांच का कि आपने कितने समय पहले करवाई थी, और उसमें सारी आपकी जो है विस्तार पूर्वक जानकारी हो, आपकी मिट्टी की कौन से किले की मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कम है, कौन सा अधिक मात्रा में है, उसी के हिसाब से आप फसल का चुनाव करेंगे, उसी के हिसाब से आपका किस्म का चुनाव करेंगे। और फिर उस अगर कृषि क्रियाएं आपने करनी है, खाद बीज का प्रबंधन भी उसी हिसाब से आपने करना पड़ेगा। यूरिया अगर पहले से ही आपकी मिट्टी में है, या फॉस्फोरस आपकी मिट्टी में पहले से ही है, तो आप ऊपर से फॉस्फोरस थोड़ी ना डालोगे। कोई अधिक मात्रा में है तो उसको कम करना है। और लेकिन ज्यादातर जो किसान भाई हैं, देखण में आवे है राजेंद्र भाई, वो गदा गदा गद ठोके जावे हैं, और उसमें एक तो आपकी लागत बढ़े है, और दूसरा जो आपका मिट्टी का स्वास्थ्य है वो सुधरने के बजाय बिगड़ता जावे है।
1: बिल्कुल देखो अंजुबान, इसमें तो कोई शक नहीं कि भी मान लिया आप मानव शरीर की अगर बात करें, भी एक चीज आप लगातार देते रहे, भी जैसे यूरिया खाद आप दे रहे हो और केमिकल आप कहीं डाल के छिड़क रहे हो,
0: जी
1: तो एक ही तरीके की आप वहां फसल लेते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि देखो उस फसल ने जो चीज चाहिए वो तो उस फसल ने वो हर साल उसको खींच ले है, तो उन तत्वों की कमी हो जाएगी। तो
0: जी
1: ये जो कार्ड जो आपका बन रहा है, इसमें जो रिकॉर्ड जब चढ़ेगा तो आपने बेरा पटेगा कि भाई इसमें आयरन की कमी है, फॉस्फोरस की कमी है, कौन सा कम करना है, कौन सा ज्यादा करना है। तो वो करने का मतलब ये है कि भी आप रिकॉर्ड में रखोगे तो जमीन की जो हो तासीर बनी रहेगी, क्योंकि देखो अंजुमान हमने किसान भाइयों को देखा है कि देखो इसमें तो कोई शक नहीं है कि भी जमीन तो घटती तो जा रही है, जोत छोटी हो रही तो दबाव ज्यादा है, तो किसान भाई करे के है वो मुंह सोचे है कि भी इससे ज्यादा से ज्यादा मैं फायदा उठा लूं, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा ले लूं। लेकिन देखो अंजुमान इसमें बात यह है कि कोई भी हद हम जो क्रॉस करेंगे तो वो तो सह देगी। जिस तरह भी मान लिया किसान भाई ने 1 कट्टा खाद का देना शुरू करा, फिर जो है वो जमीन ने दूसरे कट्टे की मांग करी अगले साल, फिर वो किसान भाई 3 कट्टे पाया गया, फिर वो 4 कट्टे पाया गया, तो एक टाइम ऐसा है कि वो जमीन जो है ना वो नुका कर ना बांझ हो जाती है जमीन। उसका कारण ये है क्योंकि आपने उसमें खाद और केमिकल इतने डाल रखे हैं कि आपने वो जमीन बिल्कुल तोड़ रखी है, तो एक बखत ऐसा आ जाएगा कि वो जमीन उगल जाएगी और वो जो है ना वो पैदावार आपकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो इसलिए किसान भाई इन समय समय पर नु कहते रहे कि भाई देखो आप इनकी जांच कराओ, इनका रिकॉर्ड रखो, और हर साल जो है ना अपनी फसलें भी बदलो, जमीन की तासीर बना के रखो। और हम तो किसान भाई बार बार ये भी कहते रहे कि फसल चक्कर का मतलब ही वही है कि बीच बीच में आप परंपरागत जो खेती कर रहे हो उसमें दलहनी फसलें एक आधी बार जरूर ले लिया करो 2-3 साल में, क्योंकि उससे जो है ना जमीन में जो जिन तत्वों की कमी होगी वो उसकी पूर्ति कर दें। क्योंकि कई बार देखो मिश्रित खेती का कहने का मतलब देखो अंजुबान इसलिए है यो कि जो फसलें एक दूसरे की पूर्ति जो तत्व जो होना चाहिए ना वो उनकी पूर्ति कर दें। तो
0: हाँ
1: जिस
0: जी,
1: तरह
0: यानी
1: चना और
0: कि
1: सरसों में आप कट्ठे बो
0: जी
1: तो इसमें कोई शक नहीं कि एक तो आप न्यारे न्यारे बो, एक दोनों फसलों थोड़ा सा मिश्रित करके वो तो वो पैदावार ज्यादा हो है।
0: तो दोनों के पोषक तत्व तो मिल जाएंगे ना
1: जी
0: उसमें। तो मिश्रित खेती है या कोई कृषि विविधीकरण की बात इसीलिए कही जाओ है क्योंकि जिस ये जो जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाएगी, उर्वरा शक्ति उसकी, और उसमें उर्वरक भी बढ़ जाएंगे, जितने भी पोषक तत्व हैं जिनकी कमी थी वो बढ़ जाएंगे। तो वो स्वास्थ्य है, जब कोई आपके शरीर में है कोई कमी है, खून की कमी है, विटामिन की कमी है, वो पूरी होंगे या आप बढ़िया स्वास्थ्य हो जाएगा, उसी प्रकार से मिट्टी का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। और इसके लिए भाई जो किस प्रकार से आवेदन कर सके हैं किसान भाई, तो इसकी जो मृदा स्वास्थ्य वेबसाइट है,

0: जी किसी भाई ने, वैसे तो आपने बता दी है विस्तार पूर्वक कि किस प्रकार का नमूना आप ले सके अपनी मिट्टी का, लेकिन फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई शंका है किसी भाई के मन में, तो वहां प्रयोगशाला में जाके आप एक दिन पूछ आओ और फिर जाके अपना सैंपल ले आके और अपना रजिस्ट्रेशन करवा दे, और वो समय समय पर आपने अपने मिट्टी का रिकॉर्ड प्रदान करवाएंगे, उसी के हिसाब से फिर आप अपनी कृषि क्रियाएं कर सके हैं। इस तरह एक तो आपकी लागत कम आओगी, दूसरा जो है आपकी मिट्टी किसी भी प्रकार की बढ़िया फसल लेने के लिए मजबूत बन जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, और आपकी जो आमदनी है आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी इसके साथ साथ।
1: बिल्कुल, देखो जो बाणी, इसमें तो कोई शक नहीं कि भाई हम किसान भाइयों शुरू तनु कहते रहे हैं कि आप जो भी फसल ले रहे हो तो उसमें खेत की तैयारी तक लेके और आखिरी तक, जब तक आपकी फसल मंडी में नहीं पहुंच जाए, तो आपने कदम कदम पर ख्याल जो रखोगे, जब भी आपने फायदा मिलेगा व्यवसाय के तौर पर देखोगे तो सारे काम आपने करने पड़ेंगे।
0: जी, और उम्मीद है कि भाई मिट्टी पानी का जो जांच है उसका महत्व तो समझ गए होंगे, और जो सोयल हेल्थ कार्ड है जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा किसान भाइयों की सुविधा के लिए, उसका भी आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर अपने खेत को और अपने आपकी जो स्थिति है आर्थिक स्थिति उसने बढ़िया कर सके हैं। तो राजेंद्र भाई, तो थोड़ी सी मानसिक स्थिति भी बढ़िया करेंगे, मनोरंजन
1: बिल्कुल
0: करवाओगे भैया का, तो सारे भाई और बाण मिलकर सुनेंगे या रागनी।
2: पाटे दे लिया काख में लोगो शर्प धरने की आहानी, पतिवर्ती धर्म तर ये जानेगी जिनने धर्म करण की बहानी। सर येर मेरा जीवना से इब मुश्किल क्योंकि लग गया बेरी।

0: ఏ కరా
1: అరే కువావచి మోవన్ భోగి దిల్లా కో జే

0: तो रागनी तोंजुबान सुनवा दी, मनोरंजन बन भाइयों का करवा दिया है
1: जी
0: और इब कार्यक्रम किसान वाणी का टेम हो चाले है। तो थोड़ी देर में फिर मिलेंगे।
1: मारे गांव में।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं अब सुनिए कार्यक्रम हमारे गांव।

0: राजेंद्र भाई, फिर तो स्वागत करा हाँ सारे बण भाइया का मारे
1: मारे
0: गांव
1: गांव में
0: में। जी
1: तो देखो जो बाण मारेगा में पहुंच गए हैं, तो सारे डाल की बातचीत करेंगे, अपने घर मोहल्ले के परिवार की सारी बतलाओगे और उनको आगरा सुख दुख सारे साझे करेंगे।
0: जी
1: तो अंजुबान देखो, बात यह है कि जो
0: यह
1: टेम
0: बात,
1: चाल है,
0: एक मिनट भाई, यह बात आपने एक नंबर की कही है कि सुख दुख साझे करेंगे। आजकल इसे की कमी है।
1: कमी तो देखो अंजुबान, बात यह है कि
0: अरे
1: कुछ
0: इतना अच्छा लगे आपने यह बात कही कि सुख दुख साझे करेंगे। न्यू सुन कान तरस जे है, कोई नु कहनी आओ मेरी सुन ले, मैंने सुना है दे।
1: बिल्कुल देखो अंजुबान, एक देखिए ये गया है कि भी गणाह नु काम का लोड भी कोनी होंदा, लेकिन फिर किसी पे टेम भी कोनी, और सारा सुधा ठीक ठाक भी चल रहा हो ना,
0: हाँ जी
1: तो भी नु पूछ ले तो भाई हाँ भाई राजी खुशी ठीक ठाक, तो आगे तो कई बार ऐसा जवाब आओ बोले हाँ लाग रहा है धक्का। हा अरे धक्का क्यों लाग रहा है भाई, जब आप हर चीज ते सक्षम हो ठीक ठाक हैं, तो फिर बिना मतलब का तनाव लेने की क्या जरूरत है, आंसते रहना चाहिए, नु कहना चाहिए हाँ भाई परमात्मा की दया सबकी में ठीक ठाक है।
0: देखो, गांव की बात आपने कही है तो कोई बुजुर्ग दादी है, चाची है, ताई है, उन्हें न्यू पूछ लेनी कि अब वो टेंशन में क्यों है। न्यू कहेगी काम नहीं धंधा, टेंशन में रहेगी। यह भी बात से भाई देखो, अपना अपना सोचने का तरीका हमें भी सही है, वो न्यू कम है। हमने तो सोचने की फुर्सतें कौन थी, काम में इतने थे। एक तो जो अपनी जीवन शैली है ना, मेरा इशारा इसी की तरफ है, जो हमारा जो लाइफस्टाइल आज के टाइम में है देखण मावे, चाहे वो शहर हो, और बात तो आप गांव की कर रहे हैं, गांव में भी हर चीज की सुविधा है, सारे काम उसमें हो जाए हैं। सुविधा तो एक एक तो ये है कि समय खाली है अपने पास, और उसमें फिर के है कि अपने

0: पास गैजेट्स हैं, चाहे वो
1: हाँ
0: टेलीविजन
1: साधन
0: है,
1: इतने हैं।
0: साधन इतने हैं, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो सोशल मीडिया है। गणितन से तो कई बार सोशल मीडिया पे भी हो जे है, वो देखो भाई फलाना ने यू स्टेटस ला रखे, अच्छा इसने न्यू ले लिया, अच्छा मतलब आपको अपन बोल की किसी का हालचाल पूछने की जरूरत नहीं, किसी का मिलन फेटने की जरूरत को नहीं। आपके पास सोशल मीडिया है तो आपने खबर तो सबकी है, लेकिन बोलचाल किसी का लगो नहीं।
1: देखो अंजुबान, इसमें एक बात और है, बिना मतलब के तनाव भी कई बार हम यूं ही हैवी कर ले। मान लिया किसी ने कि मैं सोशल मीडिया पे लिख दिया, वो आप वाली बात है, किसी ने कोई स्टेटस लगा दिया, तो उसके पक्ष का ना कारण ढूंढना शुरू कर दे हैं
0: हाँ
1: भाई, इसके बिल क्या दिक्कत हो रही है, या फिर उसने कोई अच्छा लगा दिया किसी ने, बोले इसने ऐसा के पा गया भाई है, तो मतलब कौन से पास सोचे, मतलब टेंशन हम बिना मतलब के लिए बैठे हैं। जबकि आप वाली बात ठीक है, टाइम आप पर गणाइए, मान ले स्पेयर टाइम है तो उसमें आप कोई अच्छा काम कर लें, और कोई अपने स्वास्थ्य की बात कर लें, और कोई इस ढाल की कोई एक्सरसाइज कर लें जिससे आपका जो है ना स्वास्थ्य भी ठीक रहे।
0: या तो देखो राजेंद्र भाई, या तो आपने बात करी हंसी मजाक की कि सोशल मीडिया तो कोई किसी का सुख न दुख देख के दुखी हो रहा है, कोई किसी का दुख का कारण पता करने लाग जे है, लेकिन कई बार जो मानसिक तनाव हो है वो वास्तविक भी हो है।
1: हाँ बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो
0: जैसे
1: जाएं।
0: हाँ ये बच्चों की युवा पीढ़ी की आप बात करें, किसी को अपने भविष्य को लेकर करियर को लेकर किसी प्रकार का तनाव है, किसी ने नंबरा का तनाव है, इवन चाहे छोटा बालक है उसने होमवर्क का भी तनाव है।
1: बिल्कुल, देखो अंजुमन, ये जो तनाव की बात है ना, इसने इसमें हमारा भी योगदान है कितने न कितने, जब बालक की बात करें तो, क्योंकि ऐसे केसेस अपन बहुत देखे हैं कि बालक जो रात में जाग गया, मान लिया वो थर्ड फोर्थ क्लास का बालक है, जो उसका होमवर्क नहीं हो रहा हो ना, तो केवल वो रात में 2 बजे उठ के होमवर्क करने लग जाए, क्योंकि उस पर वो स्ट्रेस तो है कि
0: जी
1: अभी तड़के स्कूल में जाना है, या आपका मैडम है सर है वो पूछेंगे, काम नहीं कर रखा, तो बताओ इतनी सी उम्र में जब स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे तो फिर जिंदगी तो बहुत लंबी है, फिर कुकुर कटी, फिर बीमारी तो आप पे भी होएंगी।
0: बहुत सारे कारण उसके हैं राजेंद्र भाई। कई बार आप जो मान लो जिंदगी में किमी करना चाह रहे हो और नहीं कर पाए परिस्थितियों के कारण, या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी उन कदे अपने टेम बढ़िया टेम था काटा था जब तो किसी प्रकार का तनाव का बेरा ही कौन था, लेकिन ये मान लो आपका घर में एक बच्चा है, दो बालक हैं और वो ठीक काम धंधे नहीं लाग रहे, तो बुजुर्ग ने भी स्ट्रेस आ जाए है तनाव,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उनको अपने बच्चों की अपने परिवार की सारे डाल की चिंता रहे बड़े मानस ने। तो ये तनाव हम सारे की जिंदगी का एक हिस्सा है, चाहे थोड़ा है किसी का ज्यादा है, और इसका एक कारण एकमात्र कारण यही है कि जो हमारा जीवन शैली है वो बदल गई है। जीवन शैली में क्या है, अपना रहन सहन भी आव है, अपना खान पीन भी आव है, चाहे वो आपने स्कूल की बात करी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात है, या कोई रोजगार की बात है, तो या खेती बाड़ी की बात है। अब देखो खेती बाड़ी में भी अगर काम धंधे में अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा तो भी तनाव आना स्वाभाविक है। कुछ एक तनाव तो स्वाभाविक है राजेंद्र भाई, लेकिन उन स्वाभाविक तनावों को भी कम करने के तरीके हैं, वो भी आप बातचीत करांगे। तो जीवन शैली की थोड़ी सी करांगे कि जीवन शैली की वजह से, अपने खान पीन की वजह से, या जो अपना समाज का ताना बाना है उसकी वजह से भी तनाव आव है।
1: बिल्कुल, देखो अंजुबान, आपके जो चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है ना, वो आपने उन चीजों से उनमें घुमा फिरा कि उड़े भी ले दे, तनाव ले आने का भी कारण हो जाता है कि आप किस कंपनी में रह रहे हैं, किस माहौल में आप रह रहे हैं।
0: जी
1: देखो अगर साफ सुथरी चीजों के साथ आप रहोगे, आपकी कंपनी ठीक है, आपकी उठ बैठ ठीक है, अड़ोस पड़ोस ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि भाई आगे तो भी सुथरी बात सुनने मिलेगी, आप भी दो सुथरी बात करेंगे। और कई बार ना आपने ठीक है, अभी कारणों का तो देखो

0: बात
1: और
0: करें,
1: बांटोगे तो दुख कम हो जाएगा।
0: कम हो जाएगा।
1: और कई बार राजेंद्र भाई तनाव जो है जरूरी भी हो जाए है। अब जैसे मान लो बच्चों की बात करी या जो युवा अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनकी बात की, जब वो थोड़ा सा बहुत भी तनाव नहीं लेंगे, तनाव का मतलब यार प्रेशर तो है, थोड़ा सा भी अगर प्रेशर नहीं लेंगे तो फिर वो मेहनत क्यों करेंगे, वो तो जमा रिलैक्स होगी, फिर वो उसी पढ़ाई पर भी उसका असर पड़ेगा। तो तनाव कहीं ना कहीं, लेकिन आपको ये निर्णय लेना है, ये निश्चित करना है कि कितना तनाव आपके लिए फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। तो इस तनाव को मैनेज किस प्रकार से करना है, कैसे इसको मतलब इसको आपके लिए फायदेमंद बनाना है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन मनोरंजन की बारी आ गई राजेंद्र भाई।
0: जी, तो सुना दें रागिनी, बाण भाई ने सुना रागिनी।

0: ਮੁਖੀ ਬਦਰੀ
1: ਨਾਰਾਇਣ
0: ਝੁੱਲਾ ਦੇਖੀ ਲੈ ਹਰੀ ਦੁਆਰ ਉਹ

Christian

0: राजेंद्र भाई, या तो सुनी भैया ने रागनी और आपा बातचीत कर रहे थे कि आजकल के जो जीवन शैली है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उसमें तनाव बहुत ज्यादा हो गया है और उस तनाव से किस प्रकार से छुटकारा पाया जा सके है। पहला जो है और उसमें सबसे बड़ा जो इसका कारण है, इसको दूर करने का सबसे बड़ा जो इसका इलाज है, वो है योग।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि देखो अंजुमान, एक ये बहुत बड़ा जो है ये अच्छा काम है कि अगर ध्यान कहीं आपने लगाया है, उनका अगर आध्यात्म कर लो या फिर फिजिकली उसने अगर आप बात करें, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि शरीर ने उससे बहुत ज़्यादा जो है ना रिलैक्स हो जाए।
0: और देखो, योग गुरु तो है ही, भारतवर्ष पूरी दुनिया में डंका है अपना। योग के अलावा जो जीवन शैली की आप बात कर रहे थे, खान पीन जो हमारा स्टाइल है, नुको अगर है राजेंद्र भाई, जिसा खाया अन्न उसा होया मन। तो
1: बिल्कुल
0: जिस प्रकार का आपका खान पान रहेगा, उसे उसा ही तो आपका जीवन में तनाव कम होगा। अच्छा आप खाओगे, मोटा अनाज खाओगे, सात्विक भोजन अगर आप लोगे तो तनाव कम हो जाएगा। और फास्ट फूड, जिसका नाम है फास्ट फूड हो गया, तो फिर वो तो आपका दिमाग निशान थोड़ी उड़ जाएगा।
1: देखो अंजुबान, ये तो भाई हम शुरू से कहते रहे हैं कि अगर आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो फास्ट फूड पे कम से कम जाओ, और जो फिर भी आपका जी नहीं मानता, नू लग गया भी खाना ही है, तो बाहर की बजाय ना बाजार की बजाय आप जो है ना इन चीज़ें ना घर पे भी बना के खा सकें, ताकि जो है ना उसकी क्वालिटी की तो एक तरीके से गारंटी हो ही जाए। क्योंकि जो भाई देखो बाहर जो कर रहा है ना, काम कर रहा है, तो वो सवेरे वह एक अड़ाई चढ़ा हुआ, सांझ टाइम उसके वह चढ़ी रहेगी, क्योंकि उस भाई का तो वो बिजनेस है।
0: जी
1: पर नू कहें कि भी देखो ये तो ख्याल आपने रखना है, और खान पान की जो बात करें तो चाहे सब्जियों की है चाहे अनाज की बात है, भाई बाजार में जो भी चीज़ हम खरीदें तो उसने प्रयोग में लेना था। पहले सब्जियों की बात करें तो देखो एक कटा फटा ना खरीदें, या फिर उसने थोड़ा सा पानी गर्म पानी में उबाल लें। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो वो आपने फायदा मिलेगा।
0: और जो जीवन शैली की जड़ तक बात है राजेंद्र भाई, जैसे कि ये जो सुविधाएं हैं, हम सारी सबके घरों में हर प्रकार की सुविधा है, लाभ बिठा रहे हैं इससे, जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी है, शारीरिक जो क्रियाएं हैं, वो बहुत कम हो गई है। पसीना निकलता ही नहीं, सुविधाएं इतनी हैं, काम सारे मशीना तो होने लग गए, तो फिर वो बैठे बैठे आदमी में क्या होगा, तनाव ही आओगा। सोचने की जो ओवर थिंकिंग आज आप कर रहे हैं हर बात के बारे में, जैसे आपने कहा था किसी का भी सोशल मीडिया पर कुछ भी आप देखो तो उसके कारण ढूंढने लग जाए, इन सब से बचने का बढ़िया तरीका है कि आपके जो फिजिकल एक्टिविटी भी अगर आपने करनी है तो योग सबसे बड़ा उपाय है इसका। और योग तो हमारे देश की पहचान है पूरी दुनिया में,
1: बिल्कुल
0: और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आने लग रहा है, वो मनाया जाएगा अभी, बड़ी धूमधाम से सारे देश में मनाया जा रहा है। तो योग के जो बहुत सारे लाभ हैं, जो युवा पीढ़ी खासकर बुजुर्ग भी, बल्कि मन तो उन्होंने लगा राजेंद्र भाई, बुजुर्गों का रुझान ज्यादा है योग की तरफ।
1: हाँ, बल्कि देखो देखा ये गया है कि जो हमारी जो ये वाली जो जनरेशन है, उन है ना, एक तो बहाना ये है कि भी टाइम को नहीं, जबकि आप फोन पे सारे दिन, मतलब अगर आप 10 घंटे खाली हैं तो उसमें से मेरे ख्याल में 4-5 घंटे तो आज आप फोन पर लगा रहे हैं,
0: जी
1: और वो भी जो है ना कितने कितने तनाव का ही कारण है। आप बहुत सारी इसी इसी चीज ढूंढ लिया हो जिससे आपका कोई संबंध नहीं है। देखो अगर एजुकेशन की बात करें तो हमारे जो गैजेट है हमारे पे, वो बहुत जो है ना उनका अगर सदुपयोग करें तो बहुत सारी चीजें हम उनमें से ढूंढ लें। जैसे छुट्टियों की बात करें तो आप बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में काम आने वाली हैं, तो आप उन पर काम कर सकें। लेकिन देखो हम बिना मतलब की जो चीजें सर्च कर लिया हैं, कई सारी बिना मतलब की चीजों में उलझ जाते हैं, जो अच्छी चीज है उसका तरह अपन टाइम ही नहीं काट पाते।
0: जी
1: काम कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तो कोई बात कर ले तो ना भाई टाइम को नहीं।
0: एक बात बताओ भाई, सारा दिन बजदा फिर आदमी, आप
1: जी
0: हो या मैं हूं, किस लिए बजा हाँ? अपने खातर कि अपना आने वाली जिंदगी है, या बच्चों के लिए कि अच्छा सही सेटअप हो जाए सारी चीजें। लेकिन आप अपने लिए, जो अपने शरीर के को स्वस्थ रखने के लिए आधा घंटा, एक घंटा, पौना घंटा नहीं निकाल सकते, तो फिर इस भागदौड़ का फायदा भी क्या?
1: भी देखो बड़े बुजुर्ग भी ठीक क्या करते रहे, इस बात ना हम भी मानने हैं कि भी जो आपकी काया ठीक है तो नू ला लो, सारी माया आपके पास है, और जो शरीर है आपका ठीक नहीं है तो भी भाग दौड़ कर लियो चाहे, और नू क्या करते
0: भाग
1: भी देखो
0: दौड़ हो कोनी, शरीर ठीक नहीं है तो उसके लिए
1: ये
0: तो
1: कर
0: शरीर
1: लो,
0: ठीक करना
1: टाइम एक ही
0: पड़ेगा।
1: साथ आया ना, देखो अंजुबान एक वक्त तो ही साया होगा ना, शरीर जवाब तो देगा ना,
0: जी बिल्कुल
1: मशीनरी है
0: देगा।
1: इसका, जो तेल पानी आप ठीक नहीं रखोगे, वो आजकल जो ना एक बीमारी घनी चल रही, बोले गोड्या का ग्रीस खत्म हो गया, ग्रीस तो खत्म होगा, अपना सारे दिन सांस तो नहीं लेने देते इसने, है कितने योग या करो, कितने सुथरी बात करो, सुथरे माहौल में उठो बैठो,
0: तो
1: सवेरे
0: योग
1: सूरज निकलने से पहला कितने 2-4 किलोमीटर हैंड आओ तो ठीक रहेगा ना।
0: जी, तो योग तो केवल शरीर शरीर ठीक होने होंदा राजेंद्र भाई, जो मानसिक तनाव की आप बात कर रहे थे मेडिटेशन से ध्यान लगाने थे, तो बहुत सारे जो आपकी मानसिक शांति के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये आप तो कम आगे कार्यक्रम के माध्यम से कम आप आधा घंटा अपने शरीर ने जरूर दो, योग में बैठो ध्यान में बैठो, ताकि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया रहे।
1: बिल्कुल, देखो अंजुमान, बातचीत तो अपन जारी रखेंगे, मनोरंजन एक बार फिर से करा दे हैं तो सुना है रागनी।

0: राजेंद्र भाई, या तो सुनी भैया ने रागनी और आप नुको थे, बातचीत जारी रखांगे। बातचीत खत्म करने का जी तो को नहीं करता, लेकिन समय के साथ चलना है। योग में पंक्चुअलिटी भी बहुत जरूरी है। ये भी
1: बिल्कुल
0: दिखावा कि समय सीमा का आपको सम्मान करना चाहिए।
1: हाँ, न्यू का करना भी देखो, बखत गेला चलना पड़ेगा। जब टेम गेला आप नहीं चले तो टेम आपने पाछे छोड़ देगा। अरे
0: जी।
1: वे बखत तो चले कार्यक्रम हमारे गांव का, तो अपने भाई राजेंद्र दुआ
0: और अंजू दुहन को दे इजाजत। सारे बाण भाई ने
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महारेगा FM 102.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम लोकमंच।

0: हरियाणवी लोक मंच कार्यक्रम सुननी है सारे बन भाइया ने, आजाद भाई की राम राम। शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य और संस्कार ये हमारे जीवन का आधार। शिक्षा वो गहना है जो बाटे से नहीं बटता, शिक्षा से सर्वांगीण विकास संभव है। सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत से सरकारी महाविद्यालयों की स्थापना की गई है, खासकर नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। इसी कड़ी में जिला आसी के गांव डाटा में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना की गई है। ग्रामीण क्षेत्र का कॉलेज, हरा भरा प्रांगण, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास जारी है। राजकीय कन्या महाविद्यालय डाटा में सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आकाशवाणी सार के साथ हैं। आप हैं श्री सोमवीर सिंह, आप सहायक हैं राजकीय कन्या महाविद्यालय डाटा में। सोमवीर सिंह जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, राजकीय कन्या महाविद्यालय डाटा की स्थापना कब हुई और किन उद्देश्यों के साथ इसकी स्थापना करी गई?
1: आजाद भाई नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और आपका महाविद्यालय डाटा में पहुंचने पर आपका स्वागत है जी। सबसे पहले जी, 3 मई 2018 को इस महाविद्यालय का इनॉग्रेशन हुआ जी, और यहाँ के क्षेत्र में आसपास में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था जी, और यहाँ के जो एरिया है यहाँ पर गर्ल्स के लिए स्पेशल एक ही मात्र ये कॉलेज है जो यहाँ पर शिक्षा ले सकती हैं गुड़िया आसपास की।
0: आसी से 20 किलोमीटर, बरवाड़ा से लगभग 17-18, खेड़ी से भी 17-18 किलोमीटर है। बीच बचाड़ा में राजकीय कन्या महाविद्यालय डाटा की स्थापना की गई। अब आपसे जानना चाहेंगे, दाखिलों की प्रक्रिया क्या है?
1: दाखिलों की प्रक्रिया सर, सरकार के द्वारा 70/2026 और 27 के एडमिशन के लिए 7 मई 2026 को ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए जी, जिसकी डेट 31 मई 2026 थी जी। अब उसको सरकार के द्वारा बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया गया है।
0: क्या प्रोसेस रहेगा
1: इसके लिए? जो साइट है सर हायर एजुकेशन की, वहां पर विजिट करके स्टूडेंट अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, नियर सीएससी सेंटर पे जाके अपना आवेदन कर सकते हैं, और जो विद्यार्थी अपने जैसे नेट वगैरह चलाते हैं, अपने सक्षम हैं, तो वो घर पे बैठकर भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
0: 15 जून है लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की, उसके बाद
1: पहली मेरिट लिस्ट डलेगी सरकार के द्वारा। जो बच्चा पहली प्रेफरेंस देगा उसमें उस बच्चे का नाम आ जाएगा, और उसके बाद फिर उसको डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, फीस भरनी और अपनी चॉइस के सब्जेक्ट देने।
0: कन्या महाविद्यालय है, कौन कौन सी संकाय यहाँ पे हैं?
1: यहाँ पर 9 सब्जेक्ट हैं जी, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, डिफेंस स्टडीज है, ये सब्जेक्ट है।
0: बीए फर्स्ट ईयर के दाखिले किए जाएंगे
1: जी।
0: कितनी सीटें हैं
1: यहाँ पर? 160 सीटें हैं जी,
0: एक साल की।
1: हाँ जी, फर्स्ट ईयर की।
0: तो एक साल की 160 सीटें हैं। कन्याओं को, छात्राओं को शिक्षित करने के लिए सतत प्रयास सरकार के जारी हैं। राजकीय महाविद्यालय डाटा में बच्चियां बेटियां दाखिला ले सके हैं। कंप्यूटर साइंस भी है?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, ये जो लैब है फुली कंप्यूटराइज है जी, और यहाँ पर स्पेशल एक क्लास जैसे बीए विद कंप्यूटर साइंस भी है।
0: लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा, आम जनता क्या सहयोग कर सके?
1: आम जनता ये सहयोग कर सकती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो अप्लाई की है एडमिशन फॉर्म की डेट, इसकी सूचना को हर एक विद्यार्थी तक पहुंचा दी जाए, ताकि जो विद्यार्थी हैं वो समय पर अपना फॉर्म भर सकें और समय पर अपना एडमिशन ले सकें। कोई ऐसा ना हो कि डेट जाने के बाद विद्यार्थी रह जाए। यही अपील है कि सभी विद्यार्थी, सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसको ज्यादा से ज्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें।
0: सोमवीर जी, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है डाटा, गुराना, मशहूदपुर, खानपुर, सिंदड़, ब्याणाखेड़ा, इस इलाके के बीच में है राजकीय कन्या महाविद्यालय डाटा। आज के युग में नारी शिक्षा बड़ी जरूरी है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी, आज के समय में अगर शिक्षित नहीं है कोई बच्चा, अगर स्टार्टिंग की बात करी जाए, अगर जहां तक देखा जाया है 10वीं और 12वीं की जो विद्यार्थी हैं, उनको माँ बाप आगे ना पढ़ा के और ऐसे ही शादी कर देते हैं, तो वो बच्चों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता मानसिक तौर पर। और जो विद्यार्थी अपना ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके शादी वगैरह करते हैं और अपनी घर गृहस्थी दोबारा चलाते हैं, इसलिए शिक्षा घर गृहस्थी को देखते हुए और आगे की जो गृहस्थी है उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए, एक समाज में अपना इकट्ठा करने के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है जी।
0: ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय कन्या महाविद्यालय डाटा में आसी से बरवाड़ा से बस सुविधाएं हैं?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, आधे घंटे की सर्विस है जी, सरकारी बसें यहां पर चलती हैं।
0: लाइब्रेरी की सुविधा?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, लाइब्रेरी है और बच्चों के लिए स्पेशल अलग से रीडिंग हॉल है और फुली एसी है जी, और सभी प्रकार की बुकें हैं, कंपटीशन के एग्जाम से रिलेटेड भी बुकें यहाँ पर अवेलेबल हैं।
0: कन्याओं का बेटियों का सर्वांगीण विकास हो इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अग्रणी प्रयास है राजकीय कन्या महाविद्यालय डाटा का। छात्राओं के लिए कोई छात्रवृत्ति योजना भी है?
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल। सरकार के द्वारा ऐसी जो विद्यार्थी है उनके लिए 14,000 सालाना और बीसी के लिए 8,000 रुपए सालाना, और इसके अंदर और भी अदर ग्रांट

0: हैं, जैसे अर्न वाइल यू लर्न है, इसके अंदर भी सरकार जैसे ऑफिसों में कैसे काम किया जाता, फाइलिंग कैसे है, उसका भी इसमें बच्चों का एडमिशन होता है और उनका इंटरव्यू बकायदा होता है और वो एक डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी ग्रांट दी जाती है, उसमें भी बच्चे भाग ले सकते हैं।
1: शोमवीर जी, आखिर में क्या आह्वान करना चाहेंगे छात्राओं से, अभिभावकों से, ताकि राजकीय कन्या महाविद्यालय डाटा या किसी भी कॉलेज में, पूरे हरियाणा के दाखिलों की डेट 15 जून है, 15 जून तक अभिभावक अपने बेटियों का दाखिले के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सके हैं। संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: संदेश के रूप में ये कहना चाहेंगे कि जी, जैसे कई बार ये देखा गया है कि यहाँ पर जैसे बच्चे अपने माँ बाप हैं बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा आपको दूर नहीं भेजेंगे, अगर पढ़ना हो तो गांव के कॉलेज में जाके पढ़ लो। अब बच्चे ये कहते हैं कि जी हमें बाहर जाना है, तो उस जिद्दोजहद में बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाते, वो कह देते कि नहीं बेटा आप गरीब बैठ जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ इस संदेश के माध्यम से, ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी कॉलेज में बच्चे का एडमिशन जरूर कराएं, उच्च शिक्षा देना हर बच्चे का अपने माँ बाप का कर्तव्य है और उसका अधिकार है, तो इस अधिकार को ना छीनते हुए जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को डाटा कॉलेज में आवेदन के लिए भेजें।
1: इस प्रकार से कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सतत प्रयास जारी है। उसी कड़ी में राजकीय कन्या महाविद्यालय डाटा में जो छात्राएं दाखिला लेना चाह रही हैं या किसी भी महाविद्यालय में छात्र हो या छात्रा, उनके आवेदन की तिथि 15 जून 2026 है, अपना दाखिला सुनिश्चित करवाने के लिए पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई कर सके हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको दाखिले दिए जाएंगे। हम सबका ये फर्ज है कि अपने आसपास के इलाके में इस बात का प्रचार करें कि अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालय हैं उसको महत्व जरूर दें, क्योंकि घर पर शिक्षा, बहुत नजदीक शिक्षा, सुलभ शिक्षा से हम अच्छा लाभ उठा सके हैं। इतने बढ़िया ज्ञान लाभ की जानकारी के लिए श्री शोमवीर सिंह जी, राजकीय कन्या महाविद्यालय डाटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर, आप सभी का, सभी आपके श्रोतागणों का, मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद सुखा नहीं रखेंगे, आपने सुनाओगे शिक्षा पर रागनी मोन डाटा व साथियों की आवाज में।

एक नया समा बनाते हैं, आपकी चाहतों का हम अपने दिल में एक खूबसूरत मकान बनाते हैं, यादों को रखेंगे उसमें ताउम्र हम आपकी, फिर चाहे हम इस जहां में रहें न रहें, लेकिन यादें हमेशा आपकी हमारी रूह में समाई रहेंगी।

दोस्तों, आज के यादों के सफर में आज आपके हम सफर आवाज की दुनिया की दोस्त क्षमा आपके साथ कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे लेकर।

दोस्तों, ये कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित है और आप हमें लगातार व्हाट्सएप भेज रहे हैं। आपको बेसब्री से इंतजार है कि आपका नाम इस कार्यक्रम में शामिल हो और हम भी पूरी पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों कि आप सभी श्रोताओं के नाम इस कार्यक्रम में शामिल हो। तो आइए आगाज बयां करते हैं इस कार्यक्रम का। और सबसे पहले जो हम व्हाट्सएप ले रहे हैं वो है फाजिल का पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल, शालिनी, टिवांसी खेड़ा। और आप हैं मजनू का टीला से, कमल बालूचा, मधु बालूचा, सागर बालूचा, सतना एमपी से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। गांव चूली देशवाले जिला हिसार से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, डडोली से रघुवीर मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा और रामनिवास पांडु। संघमित्रा श्रोता संघ से हमें ये व्हाट्सएप भेजा है, पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिमरकर, दिशांत कुमार और अर्पिता। गांव जेवरा हिसार से हमें सुन रहे हैं वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र भ्याण और मनोज भ्याण। अंबही तहसील सिलोड जिला छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से हमें ये व्हाट्सएप भेजा है, अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्रजाक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। पंजाब से वंडिंग खेड़ा, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। एमएलबी रोड ग्वालियर से हमें व्हाट्सएप मिला है, सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एस के पप्पी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज केतनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। और आप हमारे श्रोता हैं नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। मोहाली फतेहगढ़ लुधियाना से है विनोदपुरी, वीपी राजू, अशोकपुरी, सुशील बेकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलम रामा, पाली और सुनील पाठक और वीपी पुरी और श्रोताओं इनके साथ है विनोदपुरी। अजीत कसाना से माया देवी रितिक, आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से ये हमें व्हाट्सएप भेजा है। हरिनगर गीता की नगरी कुरुक्षेत्र से है, हरियाणा से है सुरेंद्र अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, अंकित अग्रवाल और सुशीला अग्रवाल। आप हैं फौजियों के गांव बांडा हेड़ी जिला हिसार से जगदीश चंद्र जांगड़ा, कृष्ण मोटा, सतबीर हट्टी और मुबारक टेलर। बागपत यूपी से हैं ममता ढींगिया, कुणाल ढींगिया। और आप हैं हमारे श्रोता पांडर

वाडा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, बलहार शाह से सूरज लोंडे, प्राची लोंडे, एकलव्य लोंडे, और श्रोतों आप ही गांव हिप्पर सोगा तहसील ओसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, बाबा शेख, सिमरन शेख और करिश्मा शेख। आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा नगमा फिल्म यादें से।

याद है मुझे तेरे संग बिताया हर वो लम्हा, वो बातें वो रातें वो मुलाकातें जो हमने घंटों बैठ कर की थी कभी। अब वो दो न जाने कहाँ पीछे छूट गया, सिर्फ तुम्हारी यादें देकर।

दोस्तों, हमारी जिंदगी में कुछ पल कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए यादें बन जाते हैं। हमने अगर किसी अपने के साथ कुछ पल बिताए होते हैं तो वो खूबसूरत यादें बन जाती हैं। हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में कुछ यादें खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, लेकिन जो यादें एक सुकून भरा एहसास हमें दे जाती हैं वो हमेशा के लिए हमारी रूह बन जाती हैं और हम उस पल को, उस लम्हे को कभी नहीं भूल पाते हैं। दोस्तों, आपके साथ जो भी लम्हा हम जीते हैं, जी भर कर जीते हैं, उसे हम कभी नहीं भूलते हैं। और आप भी हमारे साथ बिताया हर पल हर लम्हा और आकाशवाणी हिसार के साथ बिताया हर लम्हा कभी भी भूल नहीं सकते हैं और हम आपको भूलने भी नहीं देंगे। फिलहाल आप सुन रहे हैं संदेश, आपके गीत हमारे अपने दोस्त क्षमा के साथ FM 102.3 MHz पर। तो आइए, कार्यक्रम का अगला नजराना हम आपकी नजर करेंगे। इसके लिए हमें व्हाट्सएप मिला है बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्री, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टेवुल और पीबी कुल थे। और दोस्तों, आप हैं शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से हमें व्हाट्सएप मिला है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का। आप हमारे साथ जुड़े हैं दादा बाबू रोड गिरीडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजन, साहिमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से है जगदीश ढुकिया, प्रमीला, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढुकिया और उनकी दोहिती है ईवा धारणिया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो। पटेलनगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से है बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हमें ये व्हाट्सएप मिला है पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर और विशाल नाहवकर का। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मोहकर। आप हैं सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, कीरत हुजरे और रेहान शेख। पद्मा टोकीज नेपानगर एमपी से सुदर्शना, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेंशा और राजेंद्र जी शाह। गांव नथाना पंजाब से है हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। आप हमें सुन रहे हैं ततरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिरणमणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हमें व्हाट्सएप भेजा है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से है दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। शिवाजीनगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिराबाई खोबरखेड़े और छगुली ताई खोबरखेड़े। ढाणी बुलढाणा से दीपाली राम थाडे, स्वराज राम थाडे। थिरोली अमरावती से है सुनेना पवन भोंडे। गांवखारिया जिला सिरसा हरियाणा से ही प्रताप जिनागल, इंदिरा मुकेश, दिनेश अंशु, बलदेव कटारिया। मालियान सरधना मेरठ से हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन।

गांव पनिहार चक हिसार से हैं विनोद टेलर, साहिल दहिया, कृष्णा, काना और लड्डू, और इनके साथ हैं ममता। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तंस खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। सनावत से ही हमें एक और वर्चा मिला है हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। आप हैं मंसूरी रेडियो लिस्टनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंसूरी। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं दूसरा आदमी फिल्म का ये नगमा, क्या मौसम है। ए दीवाने दिल कहीं चल दूर निकल जाएं। आइए सुनते हैं।

इन आंखों में तेरी मासूमियत का चांद इस कदर चमका कि मेरे एहसास बदल गए। मेरी सांसों में एक ऐसी हलचल हुई कि मौसम के मिजाज बदल गए। बस दीवाना हुआ दिल इस कदर तेरा कि दूर तक तेरे साथ चलने को जी चाहता है।

दोस्तों, मौसम का हाल बयां दिल को हिलाता तो है। जब मौसम सुहावना होता है तो अपने किसी की याद हमें जरूरी तौर पर आती है। हम चाहते हैं ऐसे मौसम में उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारा जाए, कुछ दिल की सुनी जाए, कुछ दिल की कही जाए। अब देखिए ना दोस्तों, हम दिल की बातें आपसे अक्सर करते हैं, आप भी हमसे दिल की बातें करते हैं व्हाट्सएप के जरिए। और ये दिल की बात जब दिल से मिलती है तो एक नया एहसास पैदा होता है और उसे ही मोहब्बत कहते हैं दोस्तों। अब आप देखिए ना दोस्तों, आकाशवाणी हिसार के साथ कितनी बेशुमार बेमिसाल मोहब्बत करते हैं और हम भी आपसे तहे दिल से मोहब्बत करते हैं। आपके व्हाट्सएप जो आते हैं, हम चाहते हैं हर हाल में कार्यक्रम में शामिल हो। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश, आपके गीत हमारे अपने दोस्त क्षमा के साथ FM 102.3 MHz पर। आइए कार्यक्रम का अगला नजराना आपकी पेशगी में पेश करते हैं। इसके लिए बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से हमें ये व्हाट्सएप मिला है। रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोंडवानी और इनका समस्त माखीजा परिवार। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से हमें व्हाट्सएप भेजा है जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जीएस नायक, शोभा नायक और इनका समस्त डांगला परिवार। मोताला महाराष्ट्र से विजय रतनमाला और कुमकुम कुमारी। गांधीनगर गुजरात से हमें व्हाट्सएप भेजा है सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा ने। रतलाम MP से हमें व्हाट्सएप मिला है जगदीश धाकड़, रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से है अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुनडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनका समस्त अब्बासी परिवार। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हैं रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। कंवर कॉलोनी बड़वाहा खरगोन MP से प्रवीण शिमाली और मीना शिमाली। समाना शहर पंजाब से है पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदर, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी और इनका पूरा खुशदिल परिवार। मीरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गुहानकर राही, सरिता गुहानकर, एकांश गुहानकर। बदलापुर मुंबई से प्रणीता गुहानकर, सिद्धांत गुहानकर और अर्जुन गुहानकर। आकार हाइटस बहादुर नागपुर से हैं वैशाली, शैलेश गुहानकर, सुमित गुहानकर और कुमारी ध्वनि गुहानकर। बूंद चौहरा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका सिंह, आकृति सिंह और वंशराज सिंह। कस्बा गुन्नौर से हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहान फरदीन फारिया और ताहिरा। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। गांव चौलदा बागपत से है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, अर्जू और नव्या बिजारनिया। गोंदर करनाल से है किरण पाल बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया और रोशनी देवी। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं बदलते रिश्ते फिल्म का नगमा, मेरी सांसों को महका रही है तेरे प्यार की पहली खुशबू। आइए सुनते हैं।

पहला एहसास, पहली चुभन, पहली खलीश, पहली कशिश, पहली कसक और पहला नशा मेरी सांसों को गुलाब की मानिंद महका रहा है। तेरा प्यार पाकर, तेरा साथ पाकर, बस दिले आरजू इतनी सी है, तो यूं ही साथ चलता रहे मेरी सांसों की ताउम्र महक बनकर।

दोस्तों, सांसें महकती है मोहब्बत की तरह। जब मोहब्बत सच्ची होती है तो ऐसे लगता है सांसों में मिश्री घुल रही है। सांसें खुद महक जाती हैं मोहब्बत की दास्ता के साथ। जो पल किसी अपने के साथ बिताए होते हैं वो एहसास बन जाते हैं, हमारे जीने की वजह बन जाते हैं। जिंदगी हमें उस मोड़ पर इस कदर ले जाती है कि हम मुड़कर फिर देखना ही नहीं चाहते हैं कि हम कैसे हैं और हमारे हाल बयां कैसा है। जैसा भी है दोस्तों, मोहब्बत के साथ सुकून भरे पल जीने के लिए मोहब्बत तो लाजमी है। अब देखिए ना, आपके साथ जो पल हम बिता रहे हैं वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जो आप हमारे साथ पल बिता रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी कभी नहीं भूल पाएंगे। ये पल जो है यादगार पल बन जाते हैं हमारी जिंदगी के, जिसे हम कभी भी चाह कर भी भुला नहीं पाते हैं। अब देखिए ना दोस्तों, आप आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। आप हमेशा शिद्दत के साथ उसे सुनते रहेंगे और हम भी यही चाहते हैं कि आप हमें और हमारे कार्यक्रमों को हमेशा हमेशा तहे दिल से इत्मीनान के साथ, एक नए एहसास के साथ हमेशा हमें सुनते रहें। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश। आपके गीत हमारे अपने दोस्त क्षमा के साथ FM 102.3 MHz पर। तो आइए कार्यक्रम का अगला नजराना हम आपकी नजर करेंगे। इसके लिए हमें व्हाट्सएप मिला है। कृष्ण कुमार ढाबी, भूपत कुमार ढाबी, राधा ढाबी, विक्रम, अर्चना और साक्षी ढाबी का। सिंहधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान से यह हमें व्हाट्सएप मिला है। और आप हैं हमारे नियमित श्रोता, शादुल शहर, जिला श्रीगंगानगर से, राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। खुर्जा यूपी से हमें व्हाट्सएप भेजा है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने। और आप हैं संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से। आप लिखते हैं कि हम अबे आपको नजरअंदाज ना करें। भाई देखिए ना दोस्तों, हम आपको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके नामों के बिना तो ये कार्यक्रम संभव ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप इत्मीनान के साथ शिद्दत के साथ हमें सुनते रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी श्रोताओं के नाम इस कार्यक्रम में शामिल हों। आप हैं सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा वाघमारे और शशांक वाघमारे, मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट, जिला बिजनौर से है मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सरदारानी और हिना कोसर।

प्रियांशी और चरणदास। रिंगनी छत्तीसगढ़ से है, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। यवतमाल विदर्भ से हमें ये व्हाट्सएप मिला है, संतोष खड़से और विनोद खड़से का। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से है, सैयद मसरूर, शहनासन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सदाम और अदीब। श्रोताओं, आप हमें एक बार व्हाट्सएप भेज चुके हैं, तो दोबारा हमें व्हाट्सएप ना करें। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से है, प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। ददरेगी से है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकलम, नफीसा प्रवीण और जोहानुल होदा। गांव हमीरपुर जिला झुंझुनू राजस्थान से है, राहुल बड़वल, अजीत भाल सिंह, सुदेश और चिड़िया बरबड़। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। मोहताला महाराष्ट्र से है विजय सुरलकर, रतनमाला और कुमारी आरती। गंज डुंडवारा से है शमशुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठा और अलका मिठा।

गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हमें व्हाट्सएप मिला है विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा का। जिला खरगोन सनावद एमपी से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेखमु सभाईजन, भाई राजकुमार बोड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगता। तो आइए दोस्तों आपको सुनवाते हैं जहरीला इंसान फिल्म का ये नगमा, ओवन सिनी कहां उड़ चली, आइए सुनते हैं।

तेरे होंठों के लफ्जों को मैं आज भी पंख लगा के मेरे एहसासों के आसमान में उड़ जाती हूँ, ये कहते हुए कि देखो ये मेरी मोहब्बत है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए महकती है, चहकती है, बहकती है और सिर्फ मुझे ही पंख लगा के उड़ जाने को कहती है।

दोस्तों, हमारे अरमानों के पंख तब लगते हैं जब एहसासों में ताजगी होती है, और एहसासों में ताजगी तब होती है दोस्तों जब हमने किसी के साथ सुकून भरे पल जिए हों, और ये पल हमारी यादों में हमेशा के लिए शुमार हो जाते हैं। आपके साथ जो भी पल हम जीते हैं, जी भर कर जीते हैं, और इन पलों को हम कभी नहीं भूलते हैं। इन पलों के जरिए हम कुछ नया कर गुजरने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपके एहसासों में हमेशा के लिए तहे दिल से बसे रह सकें। और देखिए ना दोस्तों, आप तो हमारे एहसासों में हमेशा के लिए बसे होते हैं। हम चाहते नहीं कि आप हमसे दूर जाएं, और हम भी चाहते नहीं कि आपसे दूर हो जाएं। हम आवाज़ के जरिए एक दूसरे से के संग एहसासों के जरिए हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, और हमेशा दोस्तों जुड़े भी रहेंगे, जैसे आप आकाशवाणी हिसार के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो आइए इसी बात पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा। इसके लिए हम व्हाट्सएप में इन श्रोताओं के नाम लेना चाहेंगे। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। बीरडी एमपी से हैं हुकुम, सुनीता, हार्दिक और प्राची और तनु कर्मकर। यूपी प्रतापगढ़ से हैं सुरेश कुमार, रविराज, राजेश कुमार, विनीता रानी। आप हैं बड़ा बाम्बो सुपाई गांव से देवेंद्र तांती, रक्ष तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेन। लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से हमें व्हाट्सएप भेजा है बिल्लू सिंह सिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार और इनके सभी साथी। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से ही अनिल मोहन, कुशा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक। गंज ढुंडवारा यूपी से हमें व्हाट्सएप भेजा है मास्टर खिल्लू परवीज, बेगम इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। सहारनपुर यूपी से राधा नामदेव, तो आइए दोस्तों आपको सुनवाते हैं ये बहुत ही

चुराया था दिल को मेरे जब से तूने, तब मुझको ये खबर न थी कि बिन तेरे हम जी न पाएंगे। दिल चुराने के बाद हमारा तुम्हारी नजर हमारी नजर पे थी, पर गुजारिश बस इतनी सी थी हमारी कि ये करके बदल न जाना, जाने जाना तुम।

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए कार्यक्रम का अंतिम नजराना आपकी नजर करेंगे। अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुज्जा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी। श्रोतम एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोध और अंकित कांगड़ा। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। और दोस्तों ग्राम दुलापुर यूपी से ही मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी रितिक और बलवीर सिंह। शिवाजीनगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर, इंद्राबाई खोबरखेड़े। गुजरात गांधीग्राम से है प्रवीण सैनी, जगदीश जोहरी, राजेश कृष्ण, कंचन कुसुम और लड्डू कुमारी। गांव उगाला जिला अंबाला से है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनका समस्त परिवार। आप हैं खरगड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बौद्ध और तमन्ना कांगड़ा। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। खमरिया जमशेदपुर से है दोस्तों रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, मुरादू और देवंती जायसवाल। चंदोली से है विजय, सरोज, सुंदर, सुमन जायसवाल। गांव बडाग टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से है गगनदीप थांदी, त्रिपदा कुमारी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम और बेबी वामिका। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण के कपिल और कुणाल मेहरा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा नगमा साजन फिल्म से, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। आइए सुनते हैं।

इस कदर टूट कर चाहा तुमको कि किसी और को चाहने की चाहत ही न रही। कैसे यकीन दिलाएं तुमको कि आए हैं दुनिया में हम सिर्फ तेरी चाहत पाने के लिए, बस तुझे ही टूट कर चाहने के लिए।

हम क्या वजह दें तुमको कि कितना चाहते हैं हम तुमको, बस ये तो एहसासे करम है, इसे महसूस कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको हम कितना चाहते हैं ये एहसास ही आपको बताएंगे, हम तो लफ्जों में आपको बता नहीं सकते हैं। बस हाँ ये कहेंगे कि आज आपकी दोस्त इस कार्यक्रम से अनुमति चाहती है फिर से लौट के आने के लिए एक नए एहसास के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तो अपनी दोस्त रमा को इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए हिंदी समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं। इंतजार के हल्के से पल हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की

0: आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात पर और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders, it includes security in

0: आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
1: नमस्कार। 26 मई 2014, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा के विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
2: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

0: मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल फाइव में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एनपीएस कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब 30 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज 130 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम ले, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से लेस देन 50% है, कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल फाइव में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है, क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हो तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं?
0: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन्स का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन्स में से करीब करीब 250 स्टेशन्स कंप्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में, वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं, तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने,

0: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
1: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस। देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी हाईवे सेक्टर। इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो। बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस, जो आपने कहा, प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है। और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही है, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वे एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
0: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है, उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
1: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी। इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज है जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने। देखो, सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस लोड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
0: तो अब अगले अपने 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
1: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 इयर्स। जो कमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
0: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हैंडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन की बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
1: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर जी, तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, ये कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख

0: हैं, वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर दी सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है, जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड यूएस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है, जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं, तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत में एक पहचान बनाई है, उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं, तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है, और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो, और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है, वो अगर बता सकते?
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुसाइड होता था गेमिंग के कारण, वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन इस तरह के कई एग्जांपल्स, लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पर रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे, और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप? तो
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा, वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2,000 पैरामीटर्स लेता है जिसमें वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को, अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती है, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर,

0: तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में एआई का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि एआई बहुत सारी नौकरियां दे सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, एआई की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में नैसकॉम के माध्यम से आईटी इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको एआईसीटी के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्युपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है, और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन से बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
3: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
4: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही

0: सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया बेचता तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार की ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरह से कांग्रेस के समय में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते है। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फक्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं, वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे, तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी खतरा लग रहा है क्या?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मान

0: तक है, हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेंजी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी। राहुल गांधी जेंजी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेंजी से मिल रहे हैं।

0: राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहां वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजॉर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आकर के फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हमें आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारे सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रही है, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है, मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब

0: बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, ये नॉर्मल सी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है, संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।
3: अभी आप एक विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम को हमने आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किया। FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में प्रातः 5:55 पर हम पुनः आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।